0: क्यों मस्ती?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मैं

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: यस सुप्रभात, गुड मॉर्निंग राइज एंड शाइन फैमिली. ट्यूजडे आ गया है, पहला सितंबर, नया महीना है कुछ नया ट्राई करने का. आई नो कि मंडे की थकान अभी भी बॉडी में है, लेकिन दिल कह रहा है तो चलो भी बाकी है मेरे दोस्त. आज सुबह 5:04 होने को है और रोमांटिक और फुल बॉलीवुड 60s, 70s और 80s के वो गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं जो सीधा दिल लत में उतर जाते हैं. तो चाय रेडी रखिए, वॉल्यूम थोड़ा एडजस्ट कीजिए अपने हिसाब से. मॉर्निंग का टाइम है और मैं हूं नमनी, एंड अभी आप सुन रहे हैं राइज एंड शाइन.
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: कर पाया तो इतना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है कि चोरी

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:15 हो चला है ना राइज एंड शाइन पर, टाइम मशीन तो रेडी है। हम जा रहे हैं उस जमाने में जब बॉलीवुड सॉन्ग्स में लिरिक्स होते थे, मेलोडीज होती थी और एक गाना पूरा सीन क्रिएट कर देता था। 60s की सादगी, 70s का रोमांस और 80s का मैजिक। तो जारी रखते हैं आपके मॉर्निंग म्यूजिकल जर्नी को, जहाँ गाने पुराने हैं लेकिन फीलिंग्स हमारे बिल्कुल ही फ्रेश।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: वैसे पहले बॉलीवुड का लॉजिक भी कमाल का था ना. हीरो हीरोइन को ढूंढने निकलेगा तो पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएगा, लेकिन हीरोइन को फोन करने की जरूरत कभी नहीं होगी. और गाना स्टार्ट होते ही कपड़े चेंज, लोकेशन चेंज, वेदर चेंज, लेकिन हेयर स्टाइल वो तो हमेशा परफेक्ट रहता है. लेकिन रियल लाइफ में ट्यूजडे मॉर्निंग में हम एक कप चाय के बिना रेडी नहीं हो पाते हैं. और चेहरे बॉलीवुड हीरोज जो एक ही गाने में पूरा स्विट्जरलैंड घूम आते हैं. बिग हेलो टू जयशन जी जो काम पर है, ड्राइव कर रहे हैं. बुकाश टू यू, आप गाना मांग रहे हैं फॉर ऑल योर फ्रेंड्स सत्यम्बा, उमिरन, दानू, जीवन, अंगोटिया, आकाश, शर्वन, रामदेवर, मेविन के लिए. नेक्स्ट मैसेज आया है फ्रॉम सरोज जी कैथोबोन से, कह रहे हैं नाइस सिलेक्शन, थैंक यू. नेक्स्ट गीत सभी सुनने वालों के नाम करते हैं. लॉट्स ऑफ लव टू यू. इट्स योर राइज एंड शाइन.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: ये सभी के लिए टाइम हो चला है आपके होरोस्कोप का, तो चलिए जानते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज ना आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास दोनों बना रहेगा। कैरेक्टर क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, बस जल्दबाजी से बचिए क्योंकि हर काम को सही समय देना जरूरी है। आज का लकी कलर आपका है लाल और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन स्थिरता और सुकून लेकर आ सकता है। पुराने किसी काम का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना भी है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लीजिए। लकी कलर आपका है सफेद और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातों में प्रभाव रहेगा और लोग आपकी सलाह को महत्व देने वाले हैं। कोई पुराना मित्र या परिचित अचानक संपर्क कर सकता है, बस अपने विचारों को लेकर थोड़ा स्पष्ट रहिए। लकी कलर आपका है हरा और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज भावनाओं का प्रभाव थोड़ा अधिक रहेगा। किसी अपने व्यक्ति से मन की बात करने से हल्का महसूस भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य आपका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। लकी कलर आपका है चांदी जैसा सफेद और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका आत्मविश्वास दूसरों का ध्यान खींच सकता है। कोई नई अवसर की संभावना बन रही है, इसलिए अपनी प्रतिभा पर

0: भरोसा रखिए, आज आपके लिए एकदम हीरो वाली एंट्री का दिन है। लकी कल आपका है सुनहरा और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज व्यवस्था और अनुशासन से किया गया काम आपको अच्छा परिणाम देगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक चिंता ना करें, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दीजिए। लकी कल आपका है नीला और नंबर है 4।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, किसी प्रिय व्यक्ति से के साथ समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा, दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखिए। लकी कलर का है गुलाबी और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपके मन में थोड़ी दुविधा हो सकती है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोग रहेगी। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यानी कि डायरेक्शन में लगाइए। लकी कलर का है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज नए अवसर और नए विचार आपका इंतजार कर रहे हैं, यात्रा या किसी नए अनुभव का योग बन सकता है। अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखें, आज का दिन प्रगति के संकेत दे रहा है। लकी कलर आपका है पीला और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज मेहनत का फल मिलने का समय है, कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है और आपको अपनी क्षमता का एहसास भी होगा। बस दूसरों की बातों से अपना ध्यान भटकने ना दें। लकी कलर आपका है भूरा और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज कुछ नया सीखने और अपने लिए नया रास्ता खोजने का दिन है। आपका रचनात्मक विचार किसी काम को आसान बना सकता है। अपनी अलग सोच को कमजोरी नहीं अपनी विशेषता समझिए। लकी कलर का है पर्पल और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज मन शांत होगा और कल्पनाशील रहेगा, किसी रचनात्मक काम में सफलता मिल सकती है। प्रेम और संबंधों के मामलों में दिन मधुर रहेगा, अपने मन की आवाज को नजरअंदाज ना करें। लकी कलर का है आसमानी और नंबर है 12।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, morning का time है, बढ़ने वाले हैं जल्द ही पहले flash की तरफ. तो updates के लिए यही पर RM2 Radio Musti पर जुड़े रहिए. मिलते हैं संक्षिप्त समाचार के बाद.

0: Welcome to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 6 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे विधिमान नमस्कार.
6: नमस्कार निर्मणि. सभी सुनने वालों को नमस्कार. लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद आज संसद की वापसी पर पीएमक्यूटी में निवेश, कैसिनो, चुनावी जांच और एड्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही जोरी शोंगा के इस्तीफे के बाद फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सदस्य चेतन बाबूलाल पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से अपना पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन पूछेंगे. संसद में पेश होने वाले रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाना और घातक हादसों पर सजा सख्त करना है. आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर कमिटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसरी पढ़त में के लिए आएगा. नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जे और एस से इस्तीफा देकर पुल बिहोशी के फ्रोमिलिटेंट प्रोग्रेसिस FMP में शामिल हो गए हैं. उनका कहना है कि ये फैसला पैसे या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं बल्कि बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करने के एक नए तरीके के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए है. साबलुनो में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने 4 चीनी मजदूरों से पूछताछ की है. मृतक आदम शेहम जुबा के परिवार का आरोप है कि मौत से पहले विदेशी मजदूरों ने उस पर हमला किया था. इस घटना और स्थानीय लोगों की असुरक्षा की भावनाओं ने नागरिकों और विदेशी श्रमिकों के बीच सह अस्तित्व पर बहस को फिर से छेड़ दिया है, जहाँ समाज शास्त्री राजेन संतु ने श्रमिकों को स्थानीय संस्कृति और कानूनों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया है. आज 1 सितंबर से MRA ने डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल और नमूनों पर 150 रुपये का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर दिया है. 1,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं पर ये शुल्क कुरियर एजेंट द्वारा वसूला जाएगा, जबकि इससे अधिक मूल्य के शिपमेंट पर यह राशि सीधे कस्टम क्लियरेंस घोषणा में शामिल होगी. MRA के अनुसार इसका उद्देश्य आयातित सामानों की प्रोसेसिंग लागत को पूरा करना है. और विदेश में इंडोनेशिया ने बोर्नियो और सुमात्रा में जंगलों की आग और धुएं को रोकने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे ओरांगुतान का आवास नष्ट होने से उनकी प्रजाति खतरे में है. और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल.

0: जोरदार एंटी साइक्लोन अब मस्करिंस की दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। दिन के दौरान बादलों के कारण चलती हवाओं का असर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी, अन्य इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:18 पर और आज शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: आज यानी कि पहले सितंबर का एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए. अगर अगस्त में कुछ प्लान्स कंप्लीट नहीं हुए तो खुद को ब्लेम मत कीजिए. नया महीने का मतलब है दूसरा मौका, अनदर बिगिनिंग, एक और अपॉर्चुनिटी टू गेट थिंग्स राइट, चीजों को ठीक करने के लिए. एंड लाइफ को ना बॉलीवुड मूवी की तरह समझिए. एक सीन खराब हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट सीन में कमबैक हो सकता है. तो स्माइल कीजिए, बिलीव कीजिए कि सितंबर आपका महीना होगा. नमन यहीं पर है मोटिवेट करने के लिए. RM2 रेडियो मस्ती पर ही 6:10 होने को है. स्टे ट्यून्ड यहीं पर.
0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:20 हुए हैं और कुछ लोग अभी भी कंबल में हैं, लेकिन कुछ सुपरस्टार्स पहले से ही रास्ते पर हैं। आप जो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल पड़े हो, आप सबको बोन कुहार है। चाहे आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल रन पर है या अपने डेली काम के लिए निकले हैं, आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव और खूबसूरत हो। और ड्राइवर्स प्लीज सेफ ड्राइव। स्पीड से ज्यादा जरूरी है सेफली अपनी मंजिल तक पहुंचना। आपके सफर का साउंडट्रैक हम संभाल लेंगे, आप बस स्टीयरिंग व्हील संभालिए। राइज एंड शाइन के साथ आपका सफर शुरू हो चुका है। हैव अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे। एंड हमारे साथ कुछ लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं आपके मैसेजेस। सो स्टे ट्यून्ड यही RM2 रेडियो मस्ती पर।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: And yes, सभी के लिए मैसेजेस पर एक चेक करते हैं. कनेक्टेड है हमारे साथ ललित जी जो विश कर रहे हैं सभी को ए ग्रेट डे. किशन जी भी साथ दे रहे हैं सुनाम से ट्रैक अपनी पत्नी माला के लिए और दो बेटियां जिया और रिया के लिए. पतुपी माँ से वी हैव भारती जी जो गाना मांग रहे हैं अपने भैया विक्रम के लिए. गुड मॉर्निंग टू रेखा जी. श्याम दाबीचंद जी को भी बड़ा सा हेलो. ललिता जी कह रही है कि सारे गाने माइंड ब्लोइंग है तो ऐसे ही साथ देते रहिए. 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार. अभी के लिए लवली गाना डेडिकेटेड है टू ऑल ऑफ यू जो कनेक्टेड है RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

नमस्कार, मंगलवार 1 सितंबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद आज संसद की वापसी पर पीएमक्यूटी में निवेश, कैसीनो, चुनावी जांच और एड्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही जोरी शोंगा के इस्तीफे के बाद फॉर्मी रीतों प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से अपना पहला पीएनक्यू पूछेंगे। संसद में पेश होने वाले रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाना और घातक हादसों पर सजा सख्त करना है। आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर कमिटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसरी पढ़त के लिए आएगा। नीलकंठ दलू लेबर पार्टी और जॉय के इस्तीफा देकर पॉल बेरांजे के फॉर्मी रीतों प्रोग्रेसिस में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि ये फैसला पैसे या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करने के एक नए तरीके से उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए है। साबलो नौ में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने चार चीनी मजदूरों से पूछताछ की है। मृतक आदम शहम जुबा के परिवार का आरोप है कि मौत से पहले विदेशी मजदूरों ने उस पर हमला किया था। आज 1 सितंबर से एमओरे ने डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल पर नमूनों पर 150 रुपये का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर दिया है। विदेश में 63 वर्षीय पूर्व गैंग बॉस डुआन कैफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रैपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद सांसद इस मंगलवार को संसद लौट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से निवेश, मॉरिशस के कैसीनो, चुनावी जांच और छोटे एड्रियानो पेरिन की दुखद मौत शामिल।

0: अमिल है, राजमीना सीतामणि गीता सुनारान।
1: आज संसद का नया सत्र काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। पॉम्पलमुसेज और थ्रियोले के सांसद कविराज रुकनी सबसे पहले सवाल करेंगे। वे खास तौर पर स्थानीय विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की उपलब्धता के बारे में जानना चाहेंगे। कविराज रुकनी प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में भी सवाल करेंगे। वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और लक्ष्यों के साथ साथ अब तक हासिल किए गए परिणामों और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगेंगे। फोर मिलिटन प्रोग्रेसिस की सांसद जुआना बेरांशे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा घोषित 649.7 बिलियन रुपए के निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगेंगी। वे मंत्रियों द्वारा विदेश में किए गए दौरों के बारे में भी सवाल करेंगी, जिसमें खर्च की गई रकम और जमा की गई रिपोर्ट शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कविराज बिचुक फिल्म रिबेट स्कीम का मुद्दा उठाएंगे। वहीं विपक्ष के जोले शोंका 2024 के चुनावों से जुड़े खर्च की जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगेंगे। फोंको किरेन और कुशल लोबिन काजिनो डे मोरिस की स्थिति का मुद्दा उठाएंगे। वे करीब 600 कर्मचारियों की नौकरी और उनके अधिकारों को लेकर खास तौर पर आश्वासन मांगेंगे। आखिर में रोशन चमन प्रधानमंत्री से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बारे में सवाल करेंगे। वहीं ईशान जुमन बच्चे आंद्रियानो पेरिन की दुखद मौत से जुड़ी जांच के बारे में जानकारी मांगेंगे।
0: संसद की इस वापसी के दौरान विपक्ष की जगह में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फॉर्मिलिटन प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल जो जोले जोंगा के इस्तीफे के बाद पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे। वे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से अपना पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन भी पूछेंगे। बैठक संसदीय प्रश्नों के साथ जारी रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से वाक्वा फिनिक्स नगर पालिका में हाल ही में हुए कथित उत्पीड़न के मामले, सड़क सुरक्षा और चीनी क्षेत्र के मौसमी श्रमिकों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। शबनी जुजिया वाहिदारी गीता सुनारायण।
1: सांसद जुआना बेरांशे स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव वुचित से वाक्वा फिनिक्स नगर परिषद के एक कर्मचारी की हाल में हुई मौत के बारे में सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या इस कर्मचारी ने कथित उत्पीड़न और मानसिक दबाव की शिकायत की थी और क्या इस मामले में स्वतंत्र जाँच शुरू की जाएगी। स्थानीय प्रशासन मंत्री से ही सांसद ईशान जुमन पोर्टलिस नगर परिषद के निर्माण और मरम्मत विभाग के बारे में जानकारी मांगेंगे। वे खास तौर पर अप्रैल से जून 2026 के बीच मजदूरी और उपकरण पर हुए खर्च के साथ साथ कच्चे माल और अन्य सामग्री पर किए गए खर्च के बारे में जानना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी एजेंडे में रहेगा। सांसद लुडोविक काजेन मंत्री उस्मान मोहम्मद से पिछले दो वर्षों में बस अड्डों पर हुए हादसों के बारे में सवाल करेंगे। साथ ही यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी मांगेंगे। वहीं श्रम मंत्री गैसा उतिम को सांसद कुशल लोबिन के गन्ने उद्योग में मौसमी कामगारों की स्थिति से जुड़े सवाल का जवाब देना होगा। वे खास तौर पर वेतन और काम की परिस्थितियों से जुड़ी शिकायतों के बारे में जानकारी मांगेंगे। साथ ही इन कामगारों की सुरक्षा और सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में भी सवाल करेंगे। मेटाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी प्रोग्राम भी स्वास्थ्य मंत्री से पूछे जाने वाले सवालों में शामिल होगा। सावान और ब्लैक रिवर के सांसद अरविंद बाबाजी खास तौर पर इस कार्यक्रम से लाभ पाने वालों की संख्या, पिछले 5 वर्षों में किए गए खर्च और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगेंगे, जिसमें रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास भी शामिल हैं।
0: संसद में एक अन्य अपेक्षित विधेयक रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल है। सरकार सड़क सुरक्षा के संबंध में दंड को और सख्त करने का इरादा रखती है, विशेष रूप से रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में। इस मंगलवार को परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर तीसरी पढ़त पर आने से पहले कमिटी स्टेज में इसकी समीक्षा की जाएगी। काविंता पेसा, करुणा लालू।
2: पहली जनवरी से अब तक यानी 8 महीनों में 1505 आल्को टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2025 में पूरे साल ये संख्या 968 थी। 494 चालकों को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक आंकड़ों के बीच सरकार एक सख्त कदम प्रस्तावित कर रही है। उन चालकों के वाहन की जब्ती जिन्हें शराब या ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया हो। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत पुलिस को ये अधिकार होगा कि यदि कोई चालक में शराब निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, ड्रग्स टेस्ट में वो

0: विफल रहता है या उसके शारीरिक व्यवहार में नशे के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकेगी। 8 महीनों में सड़क हादसों में 103 लोगों की मौत, इनमें दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 10,254 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधेयक में रोड रेज से जुड़े व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस नए अपराध के दायरे में हमला करना या हमले की धमकी देना, अपशब्दों का इस्तेमाल, किसी आक्रामक हथियार का उपयोग, किसी वाहन को पकड़ कर लटकाना, वाहन का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश करना, वाहन को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक सड़क पर यातायात की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना या आम लोगों में डर पैदा करना शामिल हैं। रोड रेज के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनने को भी रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत एक अलग अपराध बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। वही दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 1,000,000 रुपए और अधिकतम जेल की सजा 8 साल तक हो सकती है।
1: नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जीआरए के बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद अब पुल बेहोंजे के फॉर मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट में शामिल हो गए हैं। वकील का कहना है कि ये चुनाव किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पैसे के मामले से प्रेरित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीआरए में उनका रेम्यूनरेशन एक सांसद के बराबर था और उनके अनुसार ये एक मंत्री के वेतन के करीब भी हो सकता था। नीलकंठ डल्लू का कहना है कि वे मुख्य रूप से एक बेहतर सरकारी प्रणाली के अपने दृष्टिकोण की रक्षा करने और मॉरिशस में राजनीति करने के एक अलग तरीके में योगदान देने के लिए एफएमपी में शामिल होना चाहते हैं। उनको सुनते हैं।
2: Nomination tout le monde gagne avec le gouvernement du jour. Moi, la paye plus qu'un député, moi, pas moi. Pas moi, la paye tous. Un paye ministre.
3: सरकार से मुझे नॉमिनेशन मिला, मुझे कभी कभी हर महीने किसी मंत्री जैसा वेतन मिलता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। मेरे अनुसार एक नया अच्छा चुनावी प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे सामने बहुत कम समय है, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। एक नई पार्टी है जिसमें सांसद हैं, चेतन बाबूलाल हैं, पुल बेहोंशे, जोआना बेहोंशे हैं, मैं रहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी टीम कायम की जा रही है। सभी 20 चुनाव क्षेत्र, सेंट्रल कमेटी, पोलिट ब्यूरो हैं। मुझे खुशी होती कि एक जगह रहने की बजाय जीतने वाले को दौर में शामिल किया जाए।
1: रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, अब इसका अंदाज़ा पहले ही लगाया जा सकता है। पिछले सप्ताह शुरू किए गए एक नए एप्लीकेशन के जरिए लोग अपनी पेंशन की रकम का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट की उम्र सहित कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। आखिर ये गिनती कैसे होती है और उम्र के हिसाब से पेंशन की रकम पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। यासिंदीन महमूद की इस रिपोर्ट में विवरण रजनी बिकर का है।
4: SAP के लागू होने के बाद से मॉरिशियनों को ट्रांजिशन अवधि के उपरांत 65 वर्ष की उम्र पूरा करने पर अपना पेंशन प्राप्त होगा। ये भी विकल्प मौजूद है कि 60 वर्ष में रिड्यूस्ड पेंशन मिले और साथ में 70 वर्ष के लिए बढ़ाए गए वर्षन पर भी हिसाब किया जा रहा है। आज बेसिक ओल्ड एज पेंशन के लिए एक महीने के लिए 15,555 रुपये मिलते हैं। 65 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये की रकम जुड़ जाएगी, जिससे कि कुल मिलाकर 16,555 रुपये प्राप्त होंगे। अगले साल 2027 के जनवरी महीने से BRP की जगह पर SAP होगा। जो व्यक्ति 2027 में 60 वर्ष का होगा, अगर वो 60 वर्ष पर ही अपना पेंशन हासिल करना चाहेगा तो उसे 14,167 रुपये मिलेंगे। अगर 62 वर्ष का होगा तो 2029 में उसे 17,246 रुपये मिलेंगे। 2037 में 70 वर्ष की आयु पर उसे 38,017 रुपये मिलेंगे। किस तरह ये हिसाब किए जाते हैं, इस बात पर जोर देना चाहिए कि सिमुलेशन की जरूरतों के लिए ये दर्शाया गया कि हर साल पेंशन 3.5% से बढ़ेगा और सतन मुद्रा

0: मुद्रास्फीति दर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। 1985 में जन्मे एक व्यक्ति 2050 में 65 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात 2050 में उसे 37,801 रुपए का पेंशन मिलेगा, लेकिन वो फैसला कर सकेगा कि 60 वर्ष की आयु से वो पेंशन लेगा या नहीं। 2045 में इस मामले में उसे कम पेंशन मिलेंगे, 65 वर्ष से पहले हर महीने 0.5% की कमी, 5 वर्ष पहले 30% कम। 2045 में इस व्यक्ति के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रकम 31,827 रुपए होगी, 30% की कमी के साथ हर महीने 22,279 रुपए तक पहुंच जाएगा। और अगर यही व्यक्ति 65 वर्ष के बाद इंतजार करने का फैसला करें तो 65 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने पेंशन में 0.75% जोड़ जाएंगे, प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करने के लिए 9% और 5 वर्षों पर 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 45% अधिक की रकम निर्धारित होती है। 2055 में प्रति साल 3.5% जोड़ने पर पेंशन की रकम 44,895 रुपए तक होगी। 45% की अतिरिक्त रकम के साथ 70 वर्ष की आयु पर उसे हर महीने 65,098 रुपए मिलेंगे।
1: पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को आज सुबह सीसीआईडी में पेश होना है। उन्हें मिसे मुस्तास कहे जाने वाली टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। इस मामले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख लीलाराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ता काउंटर टेररिज्म यूनिट में उनके कार्यालय में मौजूद एक डिवाइस से जुड़े कोड की तलाश कर रहे थे। रिवॉर्ड मनी जांच के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए इस उच्च पदस्थ अधिकारी ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि वे कोड भूल गए थे। लीलाराम दियाल ने स्पष्ट किया था कि हालांकि वो वस्तु उनके कार्यालय में थी, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करते थे और नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इसका इस्तेमाल करती थी। साबलुनो में रविवार को हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने 4 चीनी मजदूरों से उनकी बात जानने के लिए पूछताछ की है। इन हंगामों के पीछे मृतक अडम जेओमजुबा के परिवार का दावा है कि अपनी मौत से पहले उस पर इलाके के एक डोमिटोरी में रहने वाले विदेशी मजदूरों ने हमला किया था। 16 अगस्त को साबलुनो की लगून से 38 वर्षीय अडम जेओमजुबा का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों में सूजन बताई गई थी। आज स्थानीय निवासी इन विदेशी श्रमिकों की उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं की निंदा कर रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये झड़पें मॉरिशस के नागरिकों और विदेशी श्रमिकों के बीच कोहैबिटेशन पर बहस को फिर से जिंदा करती हैं। समाजशास्त्री राजन संतु के अनुसार इन श्रमिकों को मॉरिशस की संस्कृति और कानूनों के बारे में बेहतर ढंग से जागरूक करना बेहद जरूरी है। उनको सुनते हैं जिनसे बात की लोविना सुफिनी।
2: Quand il y a trop gros étrangers dans un pays, l'Italie est un problème pour
3: जब देश में बहुत ज्यादा विदेशी होते हैं तब स्थानीय लोगों के लिए समस्या बन जाती है। कई देशों में विदेशी कामगारों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़े होते हैं। अगर यहाँ आने वाले लोगों को समाज में कैसे जीना चाहिए नहीं सिखाएंगे, हमारी संस्कृतियाँ कैसी हैं नहीं सिखाएंगे, हमारी विदेशियों के सामने क्या उम्मीदें हैं नहीं बताएंगे तो मुश्किल होगी। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ सबका स्वागत किया जाता है। हम यहाँ आकर काम करने वालों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करें। जो संस्था उन्हें यहाँ लाते हैं उन्हें इन लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि यहाँ कौन से कानून हैं और क्या वे इनसे परिचित हैं या नहीं।
2: इसकी जो इन्फिनी जे समान जमुना हो गया एजिक समान जमुना लोग की बन आते होते ना कि बन रेगलेमो है ना कि बन लालो है ना इसकी जो तो कुओं।
1: आपको बता दें कि स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिसंबर तक मॉरिशस में लगभग 28,000 विदेशी श्रमिक थे। और विदेशी श्रमिकों के संबंध में ही मलागासी श्रमिकों की भर्ती को बेहतर ढंग से विनियमित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात मॉरिशस में उनके अधिकारों की गारंटी देना है। मॉरिशस और मलागास्कर वर्तमान में मलागासी श्रमिकों की भर्ती और रोजगार से संबंधित एक समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं जिसमें नैतिक भर्ती प्रशिक्षण और पेशेवर अनुभव की मान्यता पर विशेष जोर दिया गया है। श्रम मंत्री रेजा उतिम के लिए इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के शोषण से बचना और ये सुनिश्चित करना भी है कि इन श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा प्रदान की जाने वाली समान सुरक्षा का लाभ मिले। वे दोनों सरकारों के बीच एक समझौते के माध्यम से एक ऐसे मेकानिज्म की आवश्यकता का भी उल्लेख करते हैं जिससे मॉरिशस में मलागासी श्रमिकों

0: नागरिकों द्वारा दिए गए अंशदान का लाभ मडागास्कर लौटने पर उन्हें मिल सके। मंत्री रिजा उद्दीन को सुनते हैं जिनसे बात की अदरिया वालियानी।
1: इसकी शुरुआत हमें आश्वस्त करने से होता है कि वे मडागास्कर या मॉरिशस में मध्यस्थों को कोई रिक्रूटमेंट फीस नहीं चुकाए, इसलिए मलागासी सरकार के साथ एक समझौता तय

0: pas terminé. Nous devons penser à ça, donner ça au gouvernement malgache.
1: आज पहली सितंबर से डाक या कुरियर सेवा द्वारा आयातित पार्सल पर नए प्रोसेसिंग शुल्क लागू हो गए हैं। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्रति शिपमेंट 150 रुपये के गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी के लागू होने की घोषणा की है। ये कदम डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित और कस्टम घोषणा के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल और नमूनों पर लागू होता है। 1,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए शुल्क उस एजेंट या वाहक द्वारा वसूला जाएगा जिसने पार्सल पहुंचाया है, जिसे बाद में MRA को जमा किया जाएगा। 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के शिपमेंट के लिए ये राशि सीधे कस्टम क्लियरेंस के लिए आवश्यक सरलीकृत घोषणा में शामिल कर दी जाएगी। MRA के अनुसार इस शुल्क का उद्देश्य डाक या कुरियर सेवा के माध्यम से आयातित सामानों की प्रोसेसिंग और कस्टम क्लियरेंस से जुड़ी लागत को पूरा करना है। विदेश में 63 वर्ष पूर्व गैंग बॉस डुआन केफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रॉपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है। डेविस, जिस पर घातक हथियार से हत्या का आरोप था और जो उम्र कैद का सामना कर रहे हैं, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और उनके वकीलों ने मामले से किसी भी जुड़ाव से इनकार किया था। इंडोनेशिया ने बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों के 6 प्रांतों में जंगलों की आग से फैलने वाली धुएं को रोकने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इन जंगलों की आग ने सैकड़ों ओरांगुटांस के आवास के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है और इस प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और फिर अपने पिता को खोने के गहरे सदमे के बाद मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान कर दिया। चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जोरदार एंटीसाइक्लोन अबस्करेंस के दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। दिन के दौरान बादलों के कारण चलती हवाओं का असर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रात के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी, अन्य इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:18 पर और आज शाम 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:52 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। नोवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार करमल, जो विशाल नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज करमल के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर महाजानी रोजबेल का कब्रिस्तान ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 9:30। शेनफील्ड रोड रिवियर चौंपा में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद राम भरत, जो जोर्ज नाम से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले रिवियर चौंपा के सीएबी दफ्तर में पुराने कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती कविता राम भरत के घर शेनफील्ड रोड रिवियर चौंपा से उठाकर उत्तरी रिवियर चौंपा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों में 67 साल

की 67 years old की श्रीमती ललिता गुलजर, पैदाइशी नाम बुलक सिंह और जो अमृता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ है आज दिन के 1 बजे उनके घर पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों से उठाकर तोंबू में वर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। जबुलेन थ्रोबिश त्रियोली में 78 साल के 78 years old के श्री बाबू राव दुकी जो विजय नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले अबेखुंबी में कृषि मंत्रालय में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती जयंती दुखी के घर झबुलेन थ्रोबिश त्रियोली से उठाकर तेमिनिस त्रियोली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। अवोका स्ट्रीट मलाशो में 70 साल की 70 years old की श्रीमती शीला सिचन, पैदाइशी नाम मंगा, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन की 11 बजे उनके बेटे राकेश सिचन के घर अवोका स्ट्रीट मलाशो से उठाकर काथकोको की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ब्लॉक M51 सिटी को 2 PM में 66 साल की 66 years old की श्रीमती अरलावादी मरियन जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थ है आज दिन के 2 बजे उनके घर ब्लॉक M51 सिटी को 2 PM से उठाकर सेकोंस्टेंस 5 PM की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बैलेंस रोड कारोलिन बेलेरिवियासेश में 83 साल की 83 years old की श्रीमती सूरजमुनि हलकोरी, पैदाइशी नाम इतवारिया और जो नटवा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर बैलेंस रोड कारोलिन बेलेरिवियासेश से उठाकर लालोरा कारोलिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। दीनदयाल स्ट्रीट कोकेम्बो रिवियर चुरांपोर में 73 साल की 73 years old की श्रीमती चंद्रानी बजम्बाली, पैदाइशी नाम सकापानी और जो गीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे अश्विन बजम्बाली के घर दीनदयाल स्ट्रीट कोकेम्बो रिवियर चुरांपोर से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। रेजिडेंस जासमे नोट्रडाम में 54 साल के 54 years old के जनाब शेख मोहम्मद अली कौ बुजरागी जो अली नाम से भी जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके घर रेजिडेंस जासमे नोट्रडाम से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए नूर इमामदी मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स में 75 साल के 75 years old के श्री जदुनंदन शिवराज जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ है आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती दिलावती शिवराज के घर पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। पावे एवेन्यूज दो रोज में 54 साल के 54 years old के श्री रविन सिंह रामहित जो रवीन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ है आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अखिलेश सिंह रामहित के घर पावे एवेन्यूज दो रोज से उठाकर बिलमाओ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

इसी गाने के साथ आई मुझे चला है फुमी निर्मनी से बाय। होप यू हैड अ ग्रेट मॉर्निंग स्टार्ट। स्टे ट्यून्ड, यही आरएमजू रेडियो मस्ती पर, क्योंकि आ रही है नेक्स्ट वेरिता मॉर्निंग बीट में।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: तन्हा दिल तन्हा सफर, लेकिन यहाँ पे किसने कहा आपको कि हम आपको तन्हा छोड़ेंगे. A very good morning and welcome. You are listening to Radio Masti Vidita के साथ. और चलिए यहाँ पर घड़ी इशारा करिए कि भाई धीरे धीरे करते हम इस सफर को तय करने वाले हैं. और आपका हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे उस प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट. यहाँ पर गेम्स होंगे, वेदर रिपोर्ट्स होंगे, साथ में ट्रैफिक अपडेट्स भी होंगे, स्पोर्ट्स होंगे और हमारी बहुत सारी बातें भी. सो स्टे कनेक्टेड. चलो भाई नीलमणि के बाद मैं विदिता आपके साथ रहूंगी. आज है 1st of September. गाइस 1st of September, एक नए महीने की शुरुआत. तो इसको हम करेंगे मस्ती के साथ क्योंकि आप जुड़े हो रेडियो मस्ती के साथ.
0: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: FM 2
1: Radio Musti.
2: Soso, je sais ce qu'on va faire ce week-end.
3: Être bien sage.
2: Oui, mais aussi sauter sur des trampolines, plonger dans des piscines à boules et dévaler des toboggans lumineux. Parce que du 1er septembre au 31 décembre chez KFC, on reçoit un ticket pour Funtopia ou Gravity Max à Tribeca dans notre Tiki Fanville.
3: Ah ben, faudra être sage alors.
4: Fan Man United, Paris, Liverpool, Paris. Tout près d'où vibrer que tu as envie avec Canal Plus inclus dans ton abonnement.
5: Vivez votre passion avec la Première Ligue et l'UEFA Champions League sur les chaînes Canal Plus Sport.
4: And FA Cup, Carabao Cup and more on Super Sport Channels. Until the 13th of September, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DSTV English Plus add-on at only 699 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Offer subject to conditions. Valid in Mauritius. VAT included. Terms and technical access conditions on canalplus.com.
6: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और केजी क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है. इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड. फोन नंबर 4128468. आर के जी क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: अरे चिंता मत करो, गाना बजाने के लिए तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। We are first of September today, एक नए महीने की शुरुआत, एक नई उम्मीद की शुरुआत, कुछ नए सपनों की शुरुआत। और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो अपना बर्थडे वेट कर रहे हैं कि सितंबर में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और नया महीना है, नए नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ कई सारे लोग हैं जो आज के इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करो, आप लोग भी कुछ नया सोचो, कुछ अच्छा सोचो। देखो भाई, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको हम वापस तो नहीं ला सकते। और कहते हैं ना कि पुरानी बातों को लेकर, स्ट्रेस को लेकर जब आप नई चीज़ों पे काम करते हैं तो फोकस जो है वो थोड़ा डगमगा जाता है। सो जो हो गया सो हो गया, अब आने वाले दिनों के बारे में सोचिए। और वैसे भी जब हम सितंबर में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बस अब 3 महीने रह गए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि अब से 3 महीने रह गए। बच्चा लोग, आपको जो भी करना है थोड़ा सा ध्यान लगा के और मन लगा के, दिल लगा के करना है, क्योंकि बस ये 3 महीने के बाद हमें इस 2026 को बाय बाय कहना है। सो मेक श्योर कि आपने जो भी प्लान्स किए हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, उसको पूरा करने के लिए अब थोड़ा सा हाथ पैर ज़्यादा मारोगे। अभी फ़िलहाल के लिए तो आपके सपनों को हम सच करने वाले हैं, आपको विनर बनाकर। यस, हमारे पास गेम है विनर्स की तरफ से, और आपको 500 रुपीज़ का एक वाउचर मिल सकता है। अब इस वाउचर को पाने के लिए आपको मुझे बताना है, अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ मैगलिन पुले ऑन चेफ्रे 500 ग्राम्स। जी हाँ, अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ मैगलिन पुले ऑन चेफ्रे 500 ग्राम्स। आपको जवाब देने हैं ऑन 549 1294।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: 92 रेडियो मस्ती
1: लाफवार बेलबेल काजी रिटर्ने कट विनर
2: बेलबेल काजी दे रिटर्न कट विनर्स
3: du mardi 1er septembre au dimanche 6 septembre le lait entier en poudre Twin Cars de 1 kg à 209,95 € et du mardi 1er septembre au jeudi 3 septembre le nettoyant WC Jewel de 500 ml à 48,95 € découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu
4: On est tous winners!
5: Moments that matter with Sicom.
6: लुतु चलावे बेरा तोहर खातिर का जरूरी है जो मंजिल पर जाए के बाद वहाँ शांति आ सुरक्षा से पहुँचे के पर कोई नहीं सकी बोले कि कब सीमा पर कोनो प्रॉब्लम मैकेनिक या दुर्घटना हो जाए ऐसा बखत में ये जाने की जरूरी है कि तू अकेले नहीं हवा सिकम ड्राइव स्मार्ट एगो ऐसा लासिरोंस है जो मुश्किल घड़ी में तोहर साथी बन के रही कोनो दुर्घटना होइला पर आश्वासन रखिया कि तोहरा और तोहर यात्री के सबसे नीमन दाम देवब जा और तोहर दिन के खराब नहीं होई देवब जा टोइंग कागज के काम खातिर लासिस्टेंस जब तोहर लुतु बनता तब ले एगो लुतु और प्लास्मा मिली तोहरा एकदम बेहतर सेवा देवब जा आर दूसर समस्या जैसे तूफान बार आग लगला आर चाबी पेरदी कर दिला कोई तोहर लोतो जबरन तोड़ के चोरी करलक या चूहा काट के नुकसान करलक सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर सब सुविधा के सोच ले बाटे सिकम ड्राइव स्मार्ट तोहर बारे में सोच ले बाटे गाड़ी की सुरक्षा करल अच्छा है पर जीवन में बिना चिंता के आगे बढ़ते रहे के ई सबसे जरूरी है
3: इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
5: इट वॉज मोमेंट्स दैट मैटर विद सिकम
0: RM2
7: रेडियो मस्ती
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो RM2
7: रेडियो मस्ती
8: And yes, you are listening to Radio Masti Vinita के साथ सुबह की 7:30 हुई हैं। हमने सवाल किया था, हम खेल रहे हैं विनर्स के साथ, हमने पूछा था Until 6th of September, what is the normal price and the promotional price of Magaline? पूले अच्छे फ्रे 500 grams और यहाँ पर सही जवाब है नॉर्मल प्राइस है 134 rupees 89 cents प्रमोशनल प्राइस है 96 rupees 95 cents और यहाँ पर चलिए देखते हैं सही जवाब देखकर विनर तो वैसे तो सभी ने सही जवाब दिया है लेकिन जब लकी ड्रॉ होता है ना तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप हमें पूरे नाम और पते के साथ यहाँ पर अपने जवाब दीजिए क्योंकि जब आप अपना पूरा

0: नाम और पता यहां पर नहीं भेजते हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो मेक श्योर कि जब आप हमारे साथ खेल रहे हैं तो प्लीज अपना पूरा नाम और पता भेजे. सो यहां पर लकी ड्रॉ के बाद जो विनर आया है वो है साकिर अनारावा फ्रॉम नूवेल फ्रांस. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है ये इनाम. कंग्रेचुलेशंस विनर्स की तरफ से, आपको 500 रुपीस का ये वाउचर मिल रहा है. एंड आई रिपीट, जब हम खेल रहे हैं आपके साथ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम कहते हैं कि आपको अपना जवाब पूरे नाम और पते के साथ देना है तो आपको अपना जवाब पूरे नाम और पते के साथ ही देना पड़ता है. और यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन है हमारे विनर. तो यहाँ पर हमारे विनर है साकिर, आपको कंग्रेचुलेशंस. आपको हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट थोड़ी देर में कॉल करेंगी और आपका जो वाउचर है उसे पोस्ट कर दिया जाएगा.
1: मॉर्निंग बीट RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: इतनी सारी नागिन की नागिन गिन गिन गिन मर गए। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए लेकर आए हैं एक और सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज। जी हाँ, अगर किसी का बर्थडे है और उनको विश करना चाहते हैं आप, क्या करना है?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: And yes, friends, अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, फ्रेंड सर्कल्स में कोई है, जान पहचान का कोई है, कोई अपना है और उनको आप सरप्राइज करना चाहते हो, आपका कोई कलीग है, तो आप मुझे ज़रूर उनका फ़ोन नंबर भेज सकते हैं 1549 1294 एंड मेक श्योर कि उनका नाम भी ज़रूर भेजें और उनका फ़ोन नंबर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वरना हम फ़ोन कैसे करेंगे। तो वेटिंग फॉर यू, जल्दी करें और फिर उसके बाद ट्रिंग ट्रिंग एंड हैप्पी बर्थडे गाएंगे साथ मिलकर।
1: Morning Beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Hello, Kamal.
3: Oui.
2: Kamal, hi, good morning.
3: Good morning.
2: Yeah, how are you, Kamal?
3: Fine.
2: Okay, kaam paro?
3: Haan, kaam kar raha hu.
2: Okay, garden mein ho?
3: Haan.
2: ओके आपके पास वो व्हाइट वाले गेंदे हैं क्या?
3: व्हाइट वाले गेंदे नहीं है,
2: लेकिन मुझे तो किसी ने आपका पता दिया कि आपके पास वो व्हाइट वाले गेंदे हैं।
3: नो, नहीं है।
2: ओके, मैंने सुना है कि आप गाना गाकर अपने प्लांट्स जो है जब उसको पानी देते हो तो गाना गाते हो तब आपके जो फ्लावर्स है जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे आते हैं।
3: नहीं, ऐसा नहीं है,
2: पर मुझे तो बताया गया है कि आप गाना गाते हो। जब आप कोई भी गाना गा के सुनाए ना हमें, आज हमारा भी मूड अच्छा होना, थोड़ा अच्छा करना है। प्लीज कोई गाना गाइए ना।
3: नहीं जानता, गाना नहीं जानता।
2: आपको गाना नहीं आता?
3: नहीं आता।
2: झूठ मत बोलो यार, गाते तो हो आप।
3: नहीं।
2: ऐसे जैसे किसी शादी में जाते हो या कहीं पे किसी के बर्थडे पे जाते हो तो गाना नहीं गाते?
3: नहीं नहीं नहीं।
2: हैप्पी बर्थडे वाला गाना आता है? आता है?
3: आप नीलम जी है ना?
2: नहीं, मैं तो वेदिता हूँ।

0: रेडियो मस्ती।
1: ऐसे मस्ती तो रेडियो मस्ती पे ही होती है और हमारे सभी लिसनर्स के साथ होती है। सो चलो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और किसी ने बोला था कि आप वेजिटेबल प्लांट करते हो, आप आपके पास अभी कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? मैं सोच

0: नहीं थी ना, अभी हम प्रोग्राम खत्म करेंगे फिर आपके पास डिनर के लिए आएंगे, तो सोच रही थी कि क्या बनाओगे आप. एनीवे थैंक यू सो मच, डराना नहीं है ज्यादा आपको. सो कमल दिगंबर आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, एंड आपको मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर जो आपको कलेक्ट करना है आज नहीं तो कल. अपने आईडी कार्ड के साथ आपको आना है आज नहीं तो कल, एंड आपको हमारे पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से, आपके पूरे फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.
1: Thank you.
0: जी, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर बर्थडे. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू.
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: शान लाइव इन मॉरिशस सैटरडे 5th ऑफ सितंबर एट SBICC बाय Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 20.

0: 8 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
1: जब तू गाड़ी चलावेला का तू जानेला कि आगे का होई सकी एगो दुर्घटना लोटो अपान होई सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लोटो प्लास्मो जब लोटो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लोटो के चाबी भी गवा देला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
2: सिकोम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट
3: RM2
4: रेडियो मस्ती

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: और ये सांस नाल की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ करते हुए पहुंच गए हैं हमारे दोस्त अरविंद। चलिए जानते हैं लेटेस्ट खबरें क्या चल रहा है अभी स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, तो वेलकम करते हैं अरविंद का। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कठिन ही सही पर आर्सेनल जीत सका और ऐसा हो सका साका के गोल के साथ। 1-0 से आर्सेनल ने एस्टन विला को हराया। साका का गोल सेकंड हाफ में बैक टू बैक विन आर्सेनल के लिए, जबकि एस्टन विला की दूसरी हार। लीग टेबल में मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, हल सिटी और चेल्सी के पास 6-6 अंक हैं। इस प्रीमियर लीग सीजन का तीसरा सप्ताह इस शुक्रवार फ्राइडे से ही शुरू होगा। लिवरपूल एवे जाएगा इप्सविच टाउन के मैदान में। फिर शनिवार के मैच सैटरडे फिक्स्चर्स, अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे, 3:30 किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, फिर 6 बजे ब्रेडफोर्ड संडरलैंड, ब्राइटन लीड्स, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी कोविंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर और लेट मैच हल सिटी एस्टन विला। संडे मैच एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 बजे और 7:30 बजे धमाका आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी से होगा। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की ओर से बमबारी, 5-2 से बासा ने रायो वालेकानो को पछाड़ा। राफीना और लामिन यामाल के डबल रहे एक ऑन गोल। ओसासुना की जीत 1-0 से खेताफे पर। इटली के सेरी आ में एएस रोमा ने लेचे को 4-0 से हराया। अटलांटा 1-0 बोलोनिया। आज इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के मैच खेले जाएंगे। जर्मन कप और कोपा इटालिया के मैच भी आज ही स्केड्यूल हैं। ब्रैडली बाकोला एला आ गया बाकोला लिवरपूल में। तिजोरी खाली करनी पड़ी 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो लिवरपूल के लिए दूसरा सबसे महंगा ट्रांसफर फी है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 106 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग डायरेक्ट पेमेंट, बाकी एड ऑन्स। I'm very happy और जल्द से जल्द मैदान में उतरना चाहता हूं, ऐसा बाकोला ने कहा। मेरा सपना है प्रीमियर लीग जीतना, इसके लिए सही क्लब में आया हूं। कोडी गाकपो अभी तक लिवरपूल में ही है। सिटी ने बंप 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा पर लिवरपूल ने इनकार किया। शायद एक और स्ट्राइकर खरीदने पर गाकपो को बेचा जाएगा, पर अभी के लिए गाकपो लिवरपूल में ही है। वैसे आज सितंबर महीने की पहली तारीख सितंबर 1

0: और आज ही ट्रांसफर बाजार बंद हो जाएगा। डेडलाइन डे में भी खिलाड़ियों का आना जाना होगा। मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से निगोशिएट कर रहा है एंजो फर्नांडेज को साइन करने के लिए। चेल्सी कम से कम 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा करना चाहता है। इस बीच मैनचेस्टर सिटी एवर्टन से लीमान एंजाय को 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन करने के लिए करीब है। एंजाय टोटनहम हॉटस्पर में जाने वाला था पर रिचार्लिसन वाला डील नहीं हो पाया। रिचार्लिसन एवर्टन में जाने वाला था लेकिन सौदा नहीं हो पाया, इसीलिए सिटी आगे आ गया। एवर्टन मोनाको के स्ट्राइकर बालोगन को साइन करने जा रहा है, 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दाम है। चेल्सी से मिकाइलो मुड्रिच टोटनहम हॉटस्पर में, टोसिन अदाराबियो और रोबर्ट सांचेज कोमो में जा रहे हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट में आ गया क्रिस्टल पैलेस से डैनियल मुनोज, दाम 22 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। हल एवर्टन के मिडफील्डर टीम इरोएग बुमानो को साइन करने जा रहा है। टोटनहम हॉटस्पर से डिफेंडर केविन डांसो अब संडरलैंड में नाचेगा, ये लोन डील है। आज डेडलाइन डे, अंतिम मिनट तक शॉपिंग होती रहेगी। लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायर हो गया। अब वो अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलेगा। जो देना था दे दिया, जो करना था किया, अब अलविदा अर्जेंटीना। ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर, मोस्ट कैप्ड प्लेयर यानी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला, 2022 में वर्ल्ड कप जीता, कोपा अमेरिका 2021 और 2024 में, 2016 में 10 साल पहले उसने रिटायर होने का फैसला लिया था पर अपना फैसला वापस लेते हुए आया, 6 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। अर्जेंटीना के शर्फ में अब मेसी को नहीं देख पाएंगे पर अपने क्लब के लिए मेसी खेलेगा। सुना होगा डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना माडोना का गाना, पर मेसी जैसे मसीहा के लिए अर्जेंटीना रोएगा जरूर, खुशी के आंसू और दूर होने का गम। इमोर्टल मेसी, मेर्सी मेसी। टेनिस, यूएस ओपन के पहले ही राउंड में झटका, नोवाक जोकोविच बाहर हो गया। अर्जेंटीना के मारियानो नावोने ने जोको को हराया। अरीना सबालेंका, कार्लोस अल्काराज, मेंसिच, सित्सिपास, अनिसिमोवा, विटोलिना, मुचोवा, बुब्लिच, नाबारो, टाउनसेंड, बेरेटिनी, रूबलेव, इगा श्वातेक, ब्लॉक्स आदि खिलाड़ी आगे जा पाए। अभी बेस्ट ऑफ 128 के मैच खेले जा रहे हैं। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। आर्सेनल की जीत आस्टन विला के मैदान में 1-0 से, साका का गोल। उधर बाकोला आ गया है लिवरपूल में और मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा। टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, आपसे भी हम थोड़ी देर में मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अरविंद का इंतजार, अभी थोड़ी देर में मुलाकात।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Quality Decor finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein produit, morbe à partir de 25 roupies, granit à partir de 1000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, viens découvrir un nouveau showroom de Quality Decor, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53.
4: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
1: थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे साथ अपने मॉर्निंग में, अपनी ज़िंदगी में हमें जगह देने के लिए। अब चलिए हम आपके दिल में थोड़ी और जगह बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खुश करने वाले हैं, आपको पैम्पर करने वाले हैं। एंड यस, अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं गेम। द गेम इज़ पावर्ड बाई ticketbox.mu। एंड हम रोज़ कहते हैं ना कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आँखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिल्म करने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग बगल में बैठे हैं, अगर आप आँखें बंद करके एक बार सोचें कि हम आपको एक म्यूजिकल जर्नी में लेके जा रही हैं, अ जर्नी फिल विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान, जस्ट इमेजिन। RM2 रेडियो मस्ती आपको मौका दे रहा है टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव। सो यू कैन प्ले विद देम रेडियो मस्ती एंड RM2 एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड टिकट टू असिस्ट दिस स्पेक्टाकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट। वन वॉइस, वन स्टेज, वन अनफॉरगेटेबल नाइट एट SBICC ऑन

5th of September और ये होगा रात 8 बजे से शुरू. Proudly organized by ticketbox.mu. अब सवाल ये है कि जवाब देगा कौन. जवाब तो हर कोई देगा लेकिन सवाल होगा क्या. तो सवाल ये है, आपको मुझे बताना है, which of these experiences can you book through ticketbox.mu?

0: एंड बी आपको जवाब देने हैं ऑन 549 and 1294। याद रखिए पूरे नाम और पते के साथ तो जवाब भेजिएगा, हम कर रहे हैं आपका इंतजार, थोड़ी देर में ऐलान करेंगे विनर कौन है।
1: RM2
2: Radio Musti.
3: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
4: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Morning Beat.
5: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: बाप के जैसे यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलो यहाँ पर हमारा जो लकी ड्रॉ है वो हो चुका है एंड हमारे पास नाम भी आ गया है हमारे विनर का। तो हमने आपसे सवाल किया था, हमने आपसे पूछा था विच ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस कैन यू बुक थ्रू टिकट बॉक्स डॉट एम यू, इज इट ए लोकल एंड इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, इज इट बी प्रीमियर लीग या सी बोथ ए एंड बी। और यहाँ पर सही जवाब है बोथ ए एंड बी, यानी कि सही जवाब है सी। सो थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो विनर हैं उनको यहां पर मिल रहा है एक गोल्ड टिकट। तो ये जो गोल्ड टिकट है ये किसको मिल रहा है ये जानने के लिए चलिए अभी हम सस्पेंस को तोड़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर लकी विनर मिले, यहाँ पर नाम आपने कुछ लिखा है इट्स दौलत कुमार, लेकिन बीच में एक और नाम है मिष्ठे या कुछ। सो दौलत कुमार आप घोंघोप से हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है ये गोल्ड टिकट टू असिस्ट दी स्पेक्टेकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट और ये होगा ऑन 5th of September एट SBICC Pi, as from 8 p.m. proudly organized by ticketbox.mu. तो शान जिन्होंने अपना एक अपना ही फैन फॉलोइंग बनाया है जहाँ पे हर जनरेशन के लोग उनके गीतों को पसंद करते हैं, ये जो आज का जेंजी है वो भी उनके गाने बहुत पसंद करते हैं, गाते हैं। सो या यू आर लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट, आपको ये गोल्ड टिकट मिल रहा है जो आपको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा एट MBC अपने ID कार्ड के साथ और ये होगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से पैड के 3:30 बजे के बीच। ऑलराइट, सो 90s के जो गाने हैं आप वो मौका मिलेगा, जो रोमांटिक गाने हैं मेलोडिक फील गुड वाले गाने हैं आपको मौका मिलेगा उन गीतों को सुनने का। और चलिए इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये लीजिए अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं अब समाचारों की ओर, समाचारों के बाद आपसे हमारी मुलाकात फिर हो रही है और ऐसे ही खूबसूरत गाने हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio.

0: नमस्ते आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। लगभग एक महीना की छुट्टी के बाद आज संसद के वापसी पर पीएमक्यूटी में निवेश कासिनो चुनावी जांच और अद्रियानो पेरिन के मौत जैसन संवेदनशील मुद्दा पर चर्चा हुई। एकर संगे ही जोले जोंगो के इस्तीफे के बाद फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल पहल का हला विपक्ष के नेता के रूप में अपन सीट संभाली और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से अपन पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन पूछियन। संसद में पेश हुई होला रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के उद्देश्य रोड रेज नशा में गाड़ी चलाए के और घातक हादसा पर सजा सख्त करे के है। आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश करा जाए होला के बाद विधेयक पहल का और दूसर का पढ़त से गुजरी, फिर कमिटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसर का पढ़त खातिर आई। नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जीओएस इस्तीफा दे के पोल बेहोशे के फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस में शामिल हो गलबा। उनकर उ बोलेलन कि ये फैसला पैसा या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा खातिर नए बकिर बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करे के एगो नवा तरीका के उनकर दृष्टिकोण के आगे बढ़ाए खातिर है। साबलनुआ में होल घटना के बाद पुलिस चार चीनी मजदूर से पूछताछ करलन। मृतक आदम शहोम जुबा के परिवार के आरोप बाटे कि मवत से पहला विदेशी मजदूर उन पर हमला कर ले रहल। आज 1 सितंबर से एमओरे के डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल और नमूना परी ₹150 के गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर देवल कल्बा। और दूसरे देश की खबर में इंडोनेशिया बोनियो और सुमात्रा में जंगल की आग और धुआं के रोके के प्रयास तेज करत हवन से जिससे ओहांगुतान के आवास नष्ट हुई से उनकर प्रजाति खतरा में बाटी। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: भी झूम रहे हैं आप भी और कोई घूम भी रहा होगा, जहाँ पर मस्ती होती है वहाँ पे हंगामा तो होगा ही।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Very good morning. सुबह के 8:07 हुए हैं। आज है पहली सितंबर, ट्यूजडे का दिन। मैं हूँ वेदिता, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती। हाय, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अब जरा सांस में सांस आई। अच्छा, गाड़ी के अंदर पहुंच गए, अभी ड्राइव कर रहे हो, काम पर जाना है ना। देखो, ये जो स्ट्रेस होता है ना, इससे चेहरे पे बड़ी विंकल्स आती है और इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ओल्ड नज़र आता है। इसलिए जब स्माइल करते हो ना, तो ये विंकल्स जो होते हैं ना चेहरे पे, जो आपकी एज डिफाइन करता है, लाइक आप बूढ़े हो रहे हो, तो उसको दूर करता है। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इससे चेहरा जो है ना यंग दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा। और पता है, चेहरे पे एक रौनक आती है, एक नूर आता है। आपने कभी अपने आप को स्माइल करते हुए देखा? कभी आप आईने में अपने आप को स्माइल करते हुए देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि स्माइल की मैजिक क्या होती है। चलो, ये स्माइल आप बरकरार रखना, बड़े अच्छे लग रहे हो। अभी समय हो गया है विधिमा से मिलने का, चलिए जानते हैं आज पूरे दिन मौसम कैसा रहने वाला है।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
3: जोरदार एंटी साइक्लोन अब मस्कोरिंस के दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। दिन के दौरान बादलों के कारण चलती हवाओं का असर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी, अन्य इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे पकड़ कर रखना स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रगल है। कभी कभी पीस पाने के लिए बस लेट गो करना पड़ता है। लेट गो का मतलब गिव अप करना नहीं है, इसका मतलब है एक्सेप्ट करना कि हर सिचुएशन, हर इंसान और हर आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। पास्ट को लेट गो करो, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। पीपल को लेट गो करो, जो रहना चाहता है वो एफर्ट करेगा। हर किसी को होल्ड करके नहीं रखा जा सकता। एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम होगा तभी तो पीस ज्यादा होगा। गिल्ट को लेट गो करो, तुमने जो जाना था उस वक्त उतना ही समझा था। कंट्रोल को लेट गो करो, अपना बेस्ट दो, फिर आउटकम को ब्रीथ करने दो। भाई, एक रिमाइंडर है आज का, मुझे हर चीज़ फिक्स करना है, फोर्स करके उसे पाना है, जो मेरे लिए है वो मेरा है। ये सब अगर आप छोड़ दोगे ना, और बस ये समझ कर चलो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, बस मैं अपना पीस चूज़ करता हूँ या पीस चूज़ करती हूँ, अब जो होगा अच्छा है क्योंकि जो मेरे पास है आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे मोड़ बदलती है और ज़िंदगी कैसे शांत होती है।

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: कोई पुराने गीतों का मैजिक ही कुछ और होता है ना. कोई बात नहीं, बीट नया है लेकिन रिपीट कर सकते हैं. चलिए जी, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गेम. यस, गेम खेलेंगे हम आपके साथ. तो यहाँ पर विनर जो है उनको मौका मिलेगा टू विन वन एंट्री टिकट फॉर द कंसर्ट ऑन 5th of September ऑफर टू यू बाय इमेडिया. जी हाँ, इमेडिया ब्रिंग्स टू यू मुख्तार शाह द वॉइस ऑफ मुकेश फॉर टू शोज ऑन फ्राइडे 4th of September and Sunday 6th of September at Kudan Arts Center. Mukhtar Shah जो हैं वो अहमदाबाद से हैं, गुजरात इंडिया से, और उन्होंने अपनी मुकेश जैसी आवाज़ के साथ ना पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनकर आपको लगेगा जैसे हमारे जो ग्रेट सिंगर हैं मुकेश, उन्हीं की आवाज़ सुन रहे हैं आप. तो मुख्तार शाह विल परफॉर्म द टाइमलेस मेलोडीज ऑफ द लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूजिक लवर्स. दे गोना बी ट्रीटेड विद अनफॉरगेटेबल मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन सिनेमा ऑफ द 50s, 60s and 70s. तो यहाँ पर हमारे रिप्यूटेड मॉरिशन को सिंगर्स वर्षा रानी बिसेसर एंड विशाल मंगरू उनके साथ गाएंगे, और मुख्तार शाह विल बी अकम्पनीड बाय आवर फाइनेस्ट म्यूजिशियंस अंडर द म्यूजिकल डायरेक्शन ऑफ विजय मुनिसामी. सो MBC इज इनवाइटिंग यू टू पार्टिसिपेट एंड विन टिकट फॉर दिस शो. चलो, तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि 1974 की वो कौन सी मूवी है जिसके लिए मुकेश साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर. आपको मुझे बताना है 1974 की वो कौन सी मूवी है जिसके लिए मुकेश साहब को नेशनल

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: ऑलराइट, झूम उठे घूम उठे नाच उठे और यहाँ पर खुशी के मारे कौन डांस करना चाहेगा ये जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। हमने पूछा था आपसे, सवाल किया था 1974 की वो कौन सी मूवी है जिसके लिए मुकेश साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, एंड द राइट आंसर इज रजनीगंधा, और गाना है कई बार यूं ही देखा है। एंड यहाँ पर विनर कौन है चलिए ये भी जान लेते हैं।

So the winner is Devyani Sichin from Comte de Masque Pave. Congratulations. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है मौका क्या यहाँ पर जो मुकेश जी की आवाज़ है ना, आपको मौका मिलेगा उनको फिर से सुनने का, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे परफॉर्मर हैं, जो हमारे सिंगर हैं मुख्तार शाह, उनकी आवाज़ हूबहू मुकेश साहब से ही मिलती है. तो दो शोज़ हो रहे हैं, फ्राइडे 4th एंड संडे 6th ऑफ सितंबर को एट कोडा सेंटर. और मुख्तार शाह जो हैं वो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत गाने गुनगुनाने वाले हैं आपके लिए. गुनगुनाने वाले नहीं हैं, पूरा गाने वाले हैं. जैसे मैं पल दो पल का शायर हूँ, दोस्त दोस्त ना रहा. So congratulations to you. आपका जो टिकट है आपको आके कलेक्ट करना पड़ेगा एट MBC. बोलिए नहीं, आपको आना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 से दोपहर के 3:30 के बीच आपको आना पड़ेगा और अपना इनाम ले जाना पड़ेगा. Congratulations. RM2, feel the musty.

0: जी ये कैसा प्यार जो झूमे से उड़ जाए। वैसे गाने में ओ यानी कि टाजम को बुला रहे थे क्या?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हमारे सभी फ्रेंड्स रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज योर मॉर्निंग बीट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आपने देखा हमारे पास कितने सारे गेम्स थे, और एक बार फिर मैं आपको बता दूं हमारी विनर को दिव्यानी सीचन जी कि आपको अपना जो टिकट है वो आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा। और जो लोग मुकेश जी की आवाज़ को एक बार फिर सुनना चाहते हैं, वो जो गाना है जिसके लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, सुनना चाहेंगे?

0: चलिए इसी के साथ पल दो पल तो हम अपने दोस्त अरविंद से भी पूछना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जिन्होंने मिस कर दिया स्पोर्ट्स एक बार फिर।
1: स्पोर्ट्स न्यूज
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए फिर से उनका वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कठिन ही सही पर आर्सेनल जीत सका और ऐसा हो सका साका के गोल के साथ। 1-0 से आर्सेनल ने एस्टन विला को हराया। साका का गोल सेकंड हाफ में बैक टू बैक विन आर्सेनल के लिए, जबकि एस्टन विला की दूसरी हार। लीग टेबल में मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, हल सिटी और चेल्सी के पास 6-6 अंक हैं। इस प्रीमियर लीग सीजन का तीसरा सप्ताह इस शुक्रवार फ्राइडे से ही शुरू होगा। लिवरपूल एवे जाएगा इप्सविच टाउन के मैदान में। फिर शनिवार के मैच सैटरडे फिक्स्चर्स, अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे 3:30 किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, फिर 6 बजे ब्रेडफोर्ड संडरलैंड, ब्राइटन लीड्स, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी कोविंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर और लेट मैच हल सिटी एस्टन विला। संडे मैच एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 बजे और 7:30 बजे धमाका आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी से होगा। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की ओर से बमबारी। 5-2 से बार्सा ने रायो वालेकानो को पछाड़ा। राफिना और लामिन यामाल के डबल रहे एक ऑन गोल। ओसासुना की जीत 1-0 से खेताफे पर। इटली के सेरी आ में एएस रोमा ने लेचे को 4-0 से हराया। अटलांटा 1-0। आज इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के मैच खेले जाएंगे। जर्मन कप और कोपा इटालिया के मैच भी आज ही स्केड्यूल हैं। ब्रैडली बाकोला एला आ गया बाकोला लिवरपूल में। तिजोरी खाली करनी पड़ी 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो लिवरपूल के लिए दूसरा सबसे महंगा ट्रांसफर फी है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट 106 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, डायरेक्ट पेमेंट, बाकी एड ऑन्स। आई एम वेरी हैप्पी और जल्द से जल्द मैदान में उतरना चाहता हूं, ऐसा बाकोला ने कहा। मेरा सपना है प्रीमियर लीग जीतना, इसके लिए सही क्लब में आया हूं। कोडी गाकपो अभी तक लिवरपूल में ही है। सिटी ने बम्पर 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा पर लिवरपूल ने इनकार किया। शायद एक और स्ट्राइकर खरीदने पर गाकपो को बेचा जाएगा, पर अभी के लिए गाकपो लिवरपूल में ही है। वैसे आज सितंबर महीने की पहली तारीख September 1st और आज ही ट्रांसफर बाजार बंद हो जाएगा। डेडलाइन डे में भी खिलाड़ियों का आना जाना होगा। मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से निगोशिएट कर रहा है एंजो फर्नांडेज को साइन करने के लिए। चेल्सी कम से कम 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा करना चाहता है। इस बीच मैनचेस्टर सिटी एवर्टन से लीमान एंजाय को 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन करने के लिए करीब है। एंजाय टोटनहम हॉटस्पर में जाने वाला था पर रिचार्लिसन वाला डील नहीं हो पाया। रिचार्लिसन एवर्टन में जाने वाला था लेकिन

0: Gea Crystal Palace se Daniel Munoz dam 22 million pounds sterling. Hull Everton ke midfielder Tim Heroic Bumano को साइन करने जा रहा है. Tottenham Hotspur से डिफेंडर केविन डांसो अब संडरलैंड में नाचेगा. ये लोन डील है. आज डेडलाइन डे, अंतिम मिनट तक शॉपिंग होती रहेगी. लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायर हो गया. अब वो अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलेगा. जो देना था दे दिया, जो करना था किया. अब अलविदा अर्जेंटीना. ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर मोस्ट कप्ड प्लेयर यानी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला. 2022 में वर्ल्ड कप जीता, कोपा अमेरिका 2021 और 2024 में. 2016 में 10 साल पहले उसने रिटायर होने का फैसला लिया था, पर अपना फैसला वापस लेते हुए आया. 6 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना. अर्जेंटीना के शर्त में अब मेसी को नहीं देख पाएंगे, पर अपने क्लब के लिए मेसी खेलेगा. सुना होगा डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना माडोना का गाना, पर मेसी जैसे मसीहा के लिए अर्जेंटीना रोएगा जरूर. खुशी के आंसू और दूर होने का गम. इमोर्टल मेसी, मेर्सी मेसी. टेनिस यूएस ओपन के पहले ही राउंड में झटका, नोवाक जोकोविच बाहर हो गया. अर्जेंटीना के मारियानो नावोने ने जोको को हराया. अरीना सबालेंका, कार्लोस अल्काराज, मेंसिच, सिटसिपास, अनिसिमोवा, विटोलिना, मुचोवा, बुब्लिच, नाबारो, टाउनसेंड, बेरेटिनी, रूबलेव, इगा श्वातेक, ब्लॉक्स आदि खिलाड़ी आगे जा पाए. अभी बेस्ट ऑफ 128 के मैच खेले जा रहे हैं. सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें. आर्सेनल की जीत आस्टन विला के मैदान में 1-0 से. साका का गोल. उधर बाकोला आ गया है लिवरपूल में और मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा. एम फॉर मी टू साइन ऑफ. फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय द म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती. टेक केयर, बाय बाय.
1: मॉर्निंग बीट RM2, Radio Musty, in the mix.

0: से दूर तो मुझे होना है आपसे और इसमें पागल होने वाली कोई बात नहीं है. नहीं, मैं खुद की तारीफ करी थी. इट्स ओके. सुबह के 8 बजकर 56 मिनट हो रहे हैं, 1st of September. हेलो गाइस, आपने विनीता का साथ दिया और मुझसे पहले नीलमणि यहाँ थी और मेरे बाद यहाँ पर आ रही हैं पूनम अपने खूबसूरत गीतों के सिलेक्शन के साथ आपको एंटरटेन करने के लिए. सो दिस इज विनीता साइनिंग ऑफ. आपसे मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में 7 बजे. भूलिएगा नहीं आपके अपने मॉर्निंग बीट में. अब
1: मॉर्निंग बीट RM2 Radio Musti in the mix.
0: चलिए इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको सारा मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए. Be careful if you're driving. आराम से. And don't forget to smile. Bye bye.

0: मंगलवार 1 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं। समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद संसदीय कार्य इस मंगलवार को फिर से शुरू हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में निवेश, चुनावी जांच और छोटे एड्रियन ओपेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। संसद में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। परिवहन मंत्री द्वारा आज विधेयक पेश किए जाने के बाद ये पहली और दूसरी पढ़त फिर कमिटी स्टेज से गुजरते हुए तीसरी पढ़त तक पहुंचेगा। नीलकंठ दलू लेबर पार्टी और जॉय के बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद पुलबे होशे की फ्रों मिलिटों प्रोग्रेसिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका ये कदम न तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और न ही पैसे से प्रेरित है। दलू के अनुसार वो बेहतर सरकारी व्यवस्था और मॉरिशस में राजनीति के एक अलग तरीके के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए FMP में शामिल हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को आज सुबह CCID में मिसे मुस्ताज टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख लीलाराम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज 1 सितंबर से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लारेशन के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैम्पल्स पर लागू होगा। ₹1,000 से कम मूल्य के शिपमेंट पर शुल्क एजेंट या कुरियर वसूलेगा, जबकि ₹1,000 से अधिक के शिपमेंट में इसे सिंप्लीफाइड कस्टम्स डिक्लारेशन में शामिल किया जाएगा। एमओआरए के अनुसार शुल्क का उद्देश्य प्रोसेसिंग और कस्टम्स क्लियरेंस की लागत को कवर करना है। विदेश में 63 वर्ष पूर्व गैंग बॉस डुआन केफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रॉपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है। और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और फिर अपने पिता को खोने के गहरे सदमे के बाद मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान कर दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: 9:10 हो चुके हैं। अरे जी आ गया नया महीना भी, सितंबर का पहली सुबह और अगस्त रह गया पीछे, उसकी टेंशन छोड़िए, नया महीना है, थोड़ा सा नया मूड भी बनता है। मैं हूँ आपके साथ पूनम, अगले 3 घंटे हो गई, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने आपकी पसंद के, मेरी पसंद के तो इन्जॉय करेंगे, पर आपको इतना बोलेंगे बाहर बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा और थोड़ा सा प्यारा सा, तो चलिए भैया एक प्यारी सी वादियों वाला एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए गाने।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:20 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं इस समय हूँ आपके साथ पूनम। इंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है जो लोग ड्राइव कर रहे हैं प्लीज़ आराम से ड्राइव कीजिए, इंजॉय कीजिए म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना सोल की वॉइस है, जैसे सोल ने सुन ली उस वॉइस को तो बस फिर तो काम बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपने अपनी शॉप रेडी कर ली है, आप ऑफिस पहुँच गए हैं या जो भी अपने घर के काम जो शुरुआत करनी होती है मॉर्निंग की आपने शुरुआत कर दी है तो बस और क्या चाहिए, यही तो जिंदगी है, ब्यूटीफुल जिंदगी को ब्यूटीफुल ही बनाना होता है। तो चलिए आपको बता देते हैं भैया, जिस टाइम का इंतजार था बिल्कुल पास आने वाला है, शान आने वाले हैं 5th of September को SBICC। हम तो यही कहेंगे जिन्होंने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं बाय कर लो भाई, फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पे होगा कि टिकट्स नहीं मिल रही, क्योंकि ये इनका जो वॉइस है ना, वॉइस क्वालिटी और जो क्राउड पुलर है और जो कहते हैं ना कि हर कोई जाना चाहता है, शान आ रहा है, शान की जो डांस है मूव्स और मस्ती, और बाहर तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो फिर क्यों ना जाया जाए। तो इन्जॉय कीजिए गाने को, शान का ही गाना लगाते हैं कोई प्यारा सा और सबको यही बोलते हैं टिकट लो, इन्जॉय करो अपने गानों को साथ में इस कॉन्सर्ट को।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मस्ती मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। क्या बताऊँ, ये जो सितंबर लग गया है ना, यहाँ पर दिल की जो बहुत धड़कने हैं सभी लोगों की तेज़ हो रखी है, क्योंकि 4 सितंबर को तो आ रहा है हमारी कृष्ण जन्माष्टमी और फिर गणेश चतुर्थी भी शुरू हो जाएगी। लोगों को इनविटेशन देना, घर की साफ सफाई और उसके बाद कहते हैं ना कि सबके जो दिल है ना बिल्कुल जुड़ जाएंगे और एकदम से स्पिरिचुअलिटी जाग जाएगी। देखो अभी हमने इतना शिव शंकर जी के दिन मनाए, फिर उसके बाद ये सब आ जाते हैं दिन, तब ऐसा लगता है कि मॉरिशस में ना हर तरफ चमक है, हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ मतलब मस्ती का माहौल होता है। तो जब ये दिन आते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो, ऑफिस में सारे काम जो भी पेंडिंग वेंडिंग है सब फिनिश कर लो, क्योंकि आपको पता है कि कई लोग छुट्टी लेंगे उस स्पेशल मोमेंट पे और कईयों को बहुत सारे काम उस टाइम करने पड़ेंगे, क्योंकि कईयों के स्पेशल रोस्टर्स बनेंगे, कईयों के कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारा काम शुरू होगा। तो बस आपके साथ में हम हमेशा जुड़े हुए हैं, एंजॉय करते रहिए अपने गानों को और साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती, जो कि आपके साथ हमेशा है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: गुड मॉर्निंग, 1 सितंबर आ गया और आज देखते हैं आपका राशि फल आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज काम में आपका जोश दिखाई देगा, नई जिम्मेदारियां मिले तो खुशी से अपनाइए, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइएगा। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 5।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज कोई अच्छी सलाह आपके काम आ सकती है, पैसों के मामले में समझदारी बनाए रखिएगा, बिजी हैं तब भी अपनों के लिए जरूर समय निकालिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज आपकी बात में दम रहेगा, नई मुलाकात कोई अच्छा रास्ता दिखा सकती है, मुस्कुराकर लोगों से जुड़ते चलिए। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 3।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज काम और घर दोनों अच्छे से आप संभाल लेंगे, किसी अपने का हौसला बढ़ाकर देखिए, आपकी छोटी सी केयर बहुत मायने रखेगी उनके लिए भी और आपके लिए भी। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज थोड़ा आगे बढ़कर अपनी काबिलियत दिखाइए, लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन विनम्रता भी साथ रखिएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज प्लानिंग आपकी सबसे अच्छी साथी रहेगी, एक एक काम आप आसानी से निपटा पाएंगे, सब आसान लगेगा आपको थोड़ी देर के बाद। बीच में थोड़ा खुद को फ्रेश करने के लिए कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल जरूर खाइएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 4।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: आज टीम वर्क आपका काम आसान कर सकता है, किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, आपका अच्छा व्यवहार लोगों को याद रहेगा और आपको सब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपसे सब सलाह मांगते हैं, तो सलाह बहुत अच्छी दीजिएगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज कोई नया विचार आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, मुश्किल काम देखकर पीछे मत हटिए, हिम्मत रखिए, आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज कुछ नया सीखने का मौका हाथ लग सकता है, उत्साह से उसे अपनाइए, फायदा होगा, अपनी खुश मिजाज अंदाज को बनाए रखिए। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: आज आपकी लगन आपका आपको असर दिखाएगी, अधूरे काम पूरे करने का अच्छा समय है, काम के साथ खुद की तारीफ भी कर लीजिए। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज आपका अलग आइडिया कमाल कर सकता है, अपनी बात पूरे विश्वास से सामने रखिए, दूसरों के अच्छे सुझावों को भी स्वागत कीजिए। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 5।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज आपकी समझदारी किसी के काम आ सकती है, मदद का हाथ बढ़ाने से पीछे मत हटिएगा, अच्छी एनर्जी के साथ अपने दिन को आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे लेके चलिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 3। तो दोस्तों, राशि फल सुनकर आपको जोश तो आ ही गया होगा, पर हम आपको ये कहेंगे मुस्कान को अपने साथ हमेशा रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Can you feel it?
1: Yes!
0: Then let's go for it.

0: RM2 Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: सुबह के 10 बज रहे हैं, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
5: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद संसदीय कार्य इस मंगलवार को फिर से शुरू हो रहे हैं। विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल आज संसद में प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी को लेकर सवाल पूछेंगे। क्या अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी निजी डॉक्टर यानी डॉक्टर PS की मौजूदगी दर्ज है? क्या निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सर्जरी करने की अनुमति है? यदि हाँ तो दिसंबर 2024 से अब तक ऐसी कितनी सर्जरी हुई है और क्या इसके लिए

0: ज़रूरी मंजूरियां ली गई थीं और क्या इस मामले की जांच के लिए कोई बोर्ड बनेगा और क्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जांच पूरी होने तक अपने पद से हटने का अनुरोध करेंगी। उधर प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में निवेश मॉरिशस के कैजिनो चुनावी जांच और छोटे एड्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। राज्यसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। आज 1 सितंबर से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लेरेशन के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैंपल्स पर लागू होगा। ₹1,000 से कम मूल्य के शिपमेंट पर शुल्क एजेंट या कुरियर वसूलेगा, जबकि ₹1,000 से अधिक की शिपमेंट में इसे सिंप्लीफाइड कस्टम्स डिक्लेरेशन में शामिल किया जाएगा। एमओए के अनुसार शुल्क का उद्देश्य प्रोसेसिंग और कस्टम्स क्लियरेंस की लागत को कवर करना है। और विदेश में नेपाल की त्रिशूल नदी के पास मिट्टी से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है, जहां बचाव कर्मी पहाड़ियों को उड़ाकर अंदर हवा पंप कर रहे हैं। इस बीच नेपाल तिब्बत सीमा पर बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, जबकि लापता लोगों का अनुमानित आंकड़ा 3,925 हो गया है। इनमें 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 10:08 हो चुके हैं और सेकेंड आवर में आप सभी का स्वागत है। हम तो दिल से आप सबको बहुत प्यार करते हैं, पर आपके जब मैसेजेस आते हैं तो हमें भी एहसास हो जाता है, अरे आप भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारी तरफ से चल रहा है जी। चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हैं तो हमने सोचा इस आवर में ले लेते हैं। वीना गंगाधर साथ दे रही हैं, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है उनके हस्बैंड देव के लिए कि प्लीज़ उनके लिए एक प्यारा सा अभिजीत जी का गाना चला दो भाई, नेक्स्ट गाना उन्हीं के लिए होगा। देव जी, आपको इतनी प्यारी वाइफ मिली है, आपको तो हम कंग्रेचुलेशंस भी कह सकते हैं और कह सकते हैं बड़े लक्की हैं जी। इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। अब्दुल एंड सायरा बानो भी एक प्यारे से रोमांटिक गाने की फरमाइश कर रहे हैं और कह रहे हैं अब्दुल जी कि मैं अपनी पत्नी को, मतलब वाइफ को, बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तो आपको कहूँगी बस हमेशा ऐसे एक प्यारा सा कपल बन के रहे, इंजॉय कीजिए। राजन रघुपत जी लंदन से साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आप हम मुझे मिले भी थे तो हम तो आपको यही कहेंगे थैंक यू सो मच, आप स्पेशली अपने घर से ना मेरी आवाज़ सुनकर पहुँच गए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यलीश जी साथ दे रहे हैं और सभी के लिए गुड मॉर्निंग लेकर आए हैं और सबके लिए कह रहे हैं अरे प्लीज़ प्यारे से गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा डांस वांस कर लो। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप यलेश जी, तो हम भी आपको बोलेंगे आप भी डांस कीजिए। हरीश जी साथ दे रहे हैं, प्रकाश जी, विशेष जी, सीता जी, हेमा, सुहेल, हिना, कमलेश जी, ललित जी दे रहे हैं साथ यूएसए से, और एक हमारे बहुत ही प्यारे से खास से दोस्त हैं, उन्होंने एक कुछ लिख कर भेजा है, उनका नाम है निशान संपत, कहते हैं लाइफ इज़ अ गोल, अचीव इट, लाइफ इज़ अ चैलेंज, मीट इट, लाइफ इज़ अ गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, लाइफ इज़ अ ड्यूटी, परफॉर्म इट, लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, अनफोल्ड इट, लाइफ इज़ अ सॉन्ग, सिंग इट, लाइफ इज़ अ प्रॉमिस, फुलफिल इट, लाइफ इज़ अ लव, इन्जॉय इट, लाइफ इज़ अ ब्यूटी, प्रेज़ इट, लाइफ इज़ अ स्पिरिट, रियलाइज़ इट, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, फाइट इट, लाइफ इज़ अ पज़ल, सॉल्व इट, लाइफ इज़ एन एडवेंचर, डेयर इट, लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी, टेक इट। भाई हमने तो बोल दिया, आप सबको जिस जिसको दिल करता है इसके ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings. I'm a Karina.

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का हुई सकी एगो दुर्घटना लुटो अपान हुई सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लुटो ऑप्लास्मो जब लुटो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुटो के चाबी भी गवा देला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
3: सिकोम ग्रुप ए लाइफ टाइम कमिटमेंट
4: RM2
5: रेडियो मस्ती

0: ऊर्जा एक जरूरत नहीं पड़ी काहे की हलकोड़ी फैशन के ही पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
1: RM2
2: Radio Musti

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:25 हो चुके हैं और जो लोग घर पर हैं उनका तो बस साफ सफाई का प्लानिंग शुरू हो चुकी होगी। सबने कहा होगा ये कर लिया वो कर लिया, पर अब भी एक चीज़ की कमी जो बाकी है वो है चाय की या कॉफ़ी की। अगर कोई दे दे बना के तो कई बार बड़ा अच्छा लगता है, खुद बनाने में थोड़ा सा आलस आता है, पर ऐसा मौसम हो और वहाँ पर कॉफ़ी या चाय ना हो फिर क्या फ़ायदा। और जो ऑफिस वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे अरे काम पहले शुरू करें या एक चाय या कॉफ़ी लें। तो हम आपको एक ही बात बोलेंगे, RM2 रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहें, चाय या कॉफ़ी साथ में लें और साथ में एक प्यारी सी कंपनी हो तो और मज़ा आ जाएगा। तो इन्जॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना उन सभी के लिए जिनके मुँह में आ रहा है पानी, किसी के लिए कॉफ़ी के लिए।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:32 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, जब ये प्यारे से मैसेजेस आते हैं ना, जब फैमिली की तरफ से आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। आज हमारे एक दोस्त हैं जो आज 84 इयर्स के हो गए हैं और उनकी फैमिली उन्हें बहुत प्यार करती है और विशेस दे रही है। सुमारो फैमिली मोपलाश से बीका जी विश कर रहे हैं अपने पापा को, पर आपने अपने पापा का नाम बताया नहीं और उन्होंने बोला कि वो बहुत बड़े फैन हैं इस प्रोग्राम के जो भी रेडियो मस्ती पे चलता है। थैंक यू सो मच, हम तो आपको विश करेंगे सर, आपकी लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहें, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में और हम आपके लिए कुछ चलाना चाहते हैं, ये आपके लिए स्पेशली।

0: from Radio Musti.
1: क्या बात कर रहे हैं अभी एक प्यारा सा वेडिंग एनिवर्सरी के लिए भी एक विशेष है सूरज एंड रेशमा जी चिरमुन जी के लिए उनके राहुल बेटा और शीन बिटिया रानी आई डोंट नो उन्होंने बताया नहीं कंफर्म नहीं किया उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और विशेष और हमेशा कहते हैं कि ऐसे ही हमेशा साथ साथ रहो आपके साथ हमें खुशी मिलती है इंजॉय कीजिए अपने गाने You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got You're listening to Musti Mornings.
2: Stay tuned, stay musty. Radio Musti. देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है दौलत है शौहरत है इज्जत है इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता बस एक अच्छा खानदान चाहिए एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए
3: लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके
2: आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया
4: क्या बताता
2: संजना एयरवेज
4: हाँ हाँ संजना एयरलाइंस
2: संजना टेक्सटाइल्स
4: हाँ संजना टेक्सटाइल्स
2: काफी फैला हुआ बिजनेस है एस्टैब्लिश है अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है
5: पार्टी भी नहीं
6: सर बहुत बड़ी खुशखबरी है सर आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस पर चल रहा था ना सर वो खत्म हो गया सर गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है सेटलमेंट करना चाहता है सर सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर
7: ये लोग कौन थे सर जो चले गए
2: जा पूछ क्या

0: FM2
1: रेडियो मस्ती श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3, 4 और 5 सितंबर 2026 हर शाम 6 बजे से हर कृष्ण मंदिर लॉन्ग माउंटेन 3 दिन का दिव्य उत्सव भक्ति आनंद और कृष्ण प्रेम का रंगों में रंगने का अवसर। भारत से पधारने वाले ऋषिगण मधुर कीर्तन गूंजती मृदंग की ताल और श्री कृष्ण की मनमोहक लीला में सबका एक ही हाल। बच्चों के लिए आनंद मेला, नाटक, नृत्य, गौ पूजा, श्लोक रेसिटेशन, क्विज और स्वादिष्ट महाप्रसाद। अपने परिवार के साथ जरूर आइए और बनिए श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का हिस्सा।
2: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tour Clinique, Pointe aux Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m. So don't miss out.
3: Shan, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: Welcome to RM2.
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
3: 10:43 हो चुके हैं और ये प्यारी सी टिप है आप सभी के लिए, जो बॉयज के लिए भी हो सकती है, गर्ल्स के लिए भी हो सकती है, मेल्स के लिए भी हो सकती है, फीमेल्स के लिए भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा शॉर्टकट्स हर कोई करना चाहता है। अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे कि उस पर वो गोल्ड प्लेटेड होता है पर लगता है ओरिजिनल बिल्कुल गोल्ड लगता है, या कोई ऐसा स्टील का कुछ ऐसा है जो कि वो लड़कों के लिए भी होती हैं अवेलेबल और गर्ल्स के लिए भी होती है, तो हम आपको बोलेंगे कि जैसे आपने जब आपने ज्वेलरी पहन ली है तो आपको घर वापस आया, आपने उसको इमीजिएटली ज्वेलरी बॉक्स में वो ज्वेलरी को नहीं रखना है, क्योंकि उस पर देखिए स्वेट होता है और उसके ऊपर कभी परफ्यूम लग जाती है, उसके ऊपर कई बार बहुत सारा मेकअप आपने लगाया होता है फेस पे तो वो ज्वेलरी पे लगता है, या कभी आपने हाथ धोए होते हैं बाहर तो वो भी उसका पानी जो होता है थोड़ा सा वो ड्राई, तो आपको क्या करना है कि आपको एक सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ लेना है, उससे आपको अपनी जो भी ज्वेलरी आपने पहनी है उसको क्लीन करना है, उसकी जो परफ्यूम है, जो क्रीम है, जो उसका शाइन है उसको मतलब बरकरार रखना है, तो आपको उसको थोड़ा सा क्लीन करना है अच्छे से। जब वो अच्छे से क्लीन हो जाए फिर उसको आपने किसी सॉफ्ट पेपर में या कॉटन में या मलमल के कपड़े में लपेट के फिर अपने बॉक्स में रखना है। ये ना हो कि इमीजिएटली आप आए और आपने उतारा और अपने बॉक्स में रखा और फिनिश। जब आप नेक्स्ट टाइम डालेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है, क्योंकि उसकी जो शाइन है वो चली जाएगी, उसका जो कलर है जो गोल्ड प्लेटेड के ऊपर वो जो शाइन होती है वो चली जाएगी, और आप देखेंगे कि जो उसके अंदर कुछ आपने जो ज्वेलरी के ऊपर कुछ काम किया हुआ है वो भी बहुत ही डल सा लगेगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखिए और इंजॉय कीजिए गाने।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
3: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल आज संसद में प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी को लेकर सवाल पूछेंगे। क्या अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी निजी डॉक्टर डॉक्टर पीएस की मौजूदगी दर्ज है? क्या निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सर्जरी करने की अनुमति है? यदि हाँ तो दिसंबर 2024 से अब तक ऐसी कितनी सर्जरी हुई है और क्या इसके लिए ज़रूरी मंजूरियाँ ली गई थी? और क्या इस मामले की जांच के लिए कोई बोर्ड बनेगा और क्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जांच पूरी होने तक अपने पद से हटने का अनुरोध करेंगे? राज्यसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। परिवहन मंत्री द्वारा आज विधेयक पेश किए जाने के बाद ये पहली और दूसरी पढ़त, फिर कमिटी स्टेज से गुजरते हुए तीसरी पढ़त तक पहुँचेगा। आज से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लेरेशन के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैंपल्स पर लागू होगा। विदेशी श्रमिकों के संबंध में मॉरिशस और मलागास्कर मलागासी श्रमिकों की भर्ती और रोजगार को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए एक समझौते के मसौदे पर

0: काम कर रही हैं, इसमें नैतिक भर्ती, प्रशिक्षण, पेशेवर अनुभव की मान्यता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन के अनुसार इसका उद्देश्य शोषण रोकना और सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत समान सुरक्षा मिले। और विदेश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लड़ाक द्वीप पर अमरीकी बलों द्वारा दो रॉकेट लॉन्चरों पर हमला करने के बाद अमरीका और ईरान के बीच जवाबी हमले हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जहां जॉर्डन की सेना ने सोमवार तड़के 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की पुष्टि की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got. You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:07 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मस्ती मॉर्निंग के साथ। मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए भाई, बहुत ही प्यारा सा एक टिप लेकर आए हैं आपके लिए। कई बार क्या होता है कि जैसे हम रेगुलर डेज में नींबू लेते हैं, नींबू और उसको निचोड़ते हैं, चाहे सलाद के लिए, चाहे हम नींबू पानी पीते हैं, और उसके बाद जो छिलका होता है ना उसको फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने एक ग्लास जार लेना है, जितना भी बड़ा हो, मतलब जिसमें जैसे कह सकते हैं ना एक हाथ जितना, तो ग्लास जार लेना है, उसको अच्छे से धोना है, उसको एक अच्छे से धूप लगानी है। जब धूप लग जाएगी तो आपने जब भी नींबू निचोड़ना है, निचोड़ के आप उसका जूस निकाल लीजिए, फिर उसको पतले स्लाइसिस को काटिए। आप उस नींबू को जो आपने निचोड़ लिया है उसे फेंकिए मत, आप उसको अच्छे से काटिए। और आप जैसे आज आपने एक काटा, तो आप उसके स्लाइसिस काटिए, उस जार में डाल दीजिए। उसमें थोड़ी सी आपने एक चम्मच जितनी शुगर डालनी है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, उसमें आपने जो क्रश्ड लाल चिली होती है वो डालनी है, और कुछ नहीं डालना। उसको शेक करना है और धूप में रख देना है। जैसे फिर नेक्स्ट डे आप अगर एक और नींबू काटते हैं या शाम को काटते हैं, फिर आपने स्लाइसेस काटने हैं, उसी जार में डाल देने हैं, फिर उसको धूप में रख देना है। ऐसे ही करते करते जैसे आप रेगुलरली एक हफ्ता करते हैं, तो आप बिल्कुल नींबू के छिलकों को मत फेंकिए, क्योंकि ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, इनडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लेडीज़ को कभी क्रैम्स होते हैं पेट में, उसके लिए बहुत अच्छा है। यंगस्टर्स को, गर्ल्स को पीरियड्स का पेन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें नमक भी होगा, अजवाइन भी होगी, हल्की सी चिली भी होगी, और उससे एक आपको अचार जैसा टेस्ट भी आ जाएगा। जब भी आपको भूख लगे खा लीजिए, इंजॉय कीजिए गाने, और आप अपने मैसेजेस बिल्कुल भेजना मत भूलिएगा 9 and 1 2 9 4 पर। Enjoy कीजिए this song.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दोस्तों 11:17 हो चुके हैं और कई दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि लास्ट वीक का पेंडिंग काम निपटा रहे होंगे अभी भी इस वीक में और कह रहे होंगे काम क्यों नहीं ख़त्म होता, पर क्या करें, आपने थोड़ा सा अपनी रफ्तार को थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है। हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा फास्ट करो, क्योंकि अभी तो बस ट्यूज़डे आया है, आपके पास है 3-4 दिन वीकेंड आने तक, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को रेस्ट भी दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक का प्लान भी कर सकते हैं। पर अगर पिछले हफ्ते का ही पेंडिंग काम करा हुआ है, अभी मेल्स के रिप्लाई नहीं दिए, तो चेक करो, अपनी पॉकेट में चेक करो, आपके पर्स में काफ़ी सारे बिल्स होंगे जो कि देने हैं, पे करने हैं, तो वो भी कर लीजिए फटाफट से। जो काम कर सकते हो कर लो, मतलब छोटे छोटे से शुरू करो और फिर जो बड़ा काम होगा उसको आप कल कर सकते हैं। पर ऐसा जो काम आपको आज करना है ना, बहुत सारे काम जो छोटे छोटे वाले, उस सारे आज निपटा दो और उसके बाद आप देखना कि कल आपकी रफ्तार भी तेज़ होगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, वरना हर चीज़ भागम दौड़ में कहीं ना कहीं अटक पटक हो जाता है। तो आपको हम इतना ही बोलेंगे कि मस्ती मॉर्निंग है, आपको मस्ती करनी जरूरी है, साथ में अपने अपने काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, चाय वाय लीजिए, कुछ खा लीजिए, साथ में कई लोगों ने दाल पूरी खा ली होगी, गातो पीमा खाए होंगे, जिपे खाया होगा, उसके बाद आलूदा पिया होगा, क्योंकि कई लोग ठंड में भी पीते हैं, और आइसक्रीम मत खाना। हम तो इतना ही बोलेंगे, गरम गरम कुछ चीज़ें जो खा सकते हो खाइए, अपने गले का ध्यान रखो, थोड़ा सा वार्म कुछ पहनिए, एंजॉय कीजिए गानों को।
1: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got... You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: FM 2
1: Radio Musti
2: La foire Bilbil Kadi retourne Côte Winners.
3: Bilbil Kadi de retour Côte Winners.
4: Du mardi 1er septembre au jeudi 3 septembre, le shampoing top de 400 ml à 159,95 roupies. Et du lundi 31 août au mercredi 2 septembre, le jus Nature's de 1 litre à 69,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
2: Nous la
5: On est tous winners.
6: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:35 हो चुके हैं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में प्यार कर। सच में थोड़ा सा प्यार करो अपने साथ भी। कई लोग इस समय बहुत ओल्ड होने के बावजूद भी एक बड़ा सा बैग लेकर निकलेंगे कि हमें वेजिटेबल्स लेने जाना है या हमने थोड़ा सा ये काम करना है, वो काम करना है। चलते चलते बस हम आपको इतना ही करेंगे कि थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालिएगा। कुछ नारियल पानी पी लीजिएगा, कोई फ्रूट्स होगा वहीं पर खड़े खड़े खा लीजिएगा। ये ना हो कि आपकी हेल्थ ऐसी, मतलब आपको लगे कि भाई थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है और उसके बाद भी आप लगे रहे हैं, क्योंकि सुबह से काम कर रहे होते हैं, सुबह से उठते हैं, तो थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिएगा। और अगर जो हमारे वो लोग हैं जो कि हाउसवाइफ्स हैं, उनको हम कहेंगे अगर आते आते जाते जाते अगर हेयर कट करवाना है तो वो करवाए आइए, हेयर कलर करवाना है, फेशियल करवाना है, थोड़ा सा कहते हैं ना अपने अंदर चेंज लाते हैं तो थोड़ा सा मूड भी रिफ्रेश हो जाता है, घर को भी अच्छा लगता है, सब लोगों को लगता है अरे आप तो बड़ा चमक रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ करते रहना चाहिए, साथ में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। और उसके साथ में हम आपको बोलेंगे गानों के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 11:47 हो चुके हैं और हमारे पास हमारे बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं और हम तो चाहेंगे कि इनसे बहुत सारी बातें करें पर बस ये एडजस्ट हो रहे हैं। आजो जी आजो। हेलो जी। हेलो एवरीवन। कैस हेलो। कहाँ से आए हैं आप?
3: हम त्रियोली से आए हैं।
2: आप त्रियोली से आए?
3: हम सब लोग SC के मेहमान हैं। सब यहाँ हमारे आज दावत है यहाँ पर।
2: अरे मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आप आए हमारे MBC, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो यही कहते रहते हैं सबको आना चाहिए। सबको अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता है कि कितना प्यार आप सब लोग हमें भी देते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी पसंद के गाने आपके सारे हर सुख दुख में MBC हमेशा आपके पास और आपके साथ रहता है। आप बताएं और क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए भाई, हमारे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या बात कहना है, प्यार देना है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग आए। कौन सा गाना आपको पसंद है? आप सबका
3: हम लोगों को बहुत पुराना गाना पसंद है।
2: कौन सा वाला पसंद है?
3: कौन सा वाला पसंद है बोलो सब लोग। कौन सा गाना?
2: जब हम जवान होंगे। जाने कहाँ होंगे? अरे आप भी यही होंगे, हम भी यही होंगे, कहीं कोई नहीं जाएगा। सो नाइस। देखिए भाई, ऐसे ही होता है, यही प्यार है। हम लोग उम्मीद करते हैं आप सब से कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। आप सब जवान हैं, हमेशा आप हमारे पास रहते हैं। आप सब हमारे सर का सरताज हैं भाई। आपने कहाँ जाना है तो हम तो आपके लिए ये जो मस्ती मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग वाला, इसमें थोड़ा सा डांस वांस का गाना चलाते हैं आप सबके लिए। पर हम उसके बाद जब रेट्रो रिदम 12 बजे चलेगा तो सबसे पहला गाना आप ही सभी का लगाएंगे। चलिए ये गाना आप सबके नाम करते हैं। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: RM2 Radio Musty.
1: तो दोस्तों आज की मस्ती मॉर्निंग में बस इतना ही। उम्मीद है गानों और बातों के साथ आपकी मस्ती और बढ़ गई होगी, आपने बहुत अच्छी मॉर्निंग गुजारी होगी। अब हम आपको यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलेगा नीतू शाह का। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: घड़ी मिलाते चलिए दिन के ठीक 12 बजे हैं. संदेव संक्षिप्त समाचार आपसे भी धीमा नमस्कार.
6: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार. विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी को लेकर सवाल पूछे. अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है. सबसे पहले अनुरोध अस्पताल के सर्जन को भेजा जाता है और यदि सर्जन सहमत हो जाता है तो अस्पताल के निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल की मंजूरी आवश्यक होती है. सार्वजनिक अस्पतालों में निजी चिकित्सकों की उपस्थिति कोई नई बात नहीं है. पिछले 18 महीनों के दौरान 60 मेडिकल टीमों ने मॉरिशस का दौरा किया है जिनके माध्यम से 2500 परामर्श और 1300 जटिल शल्य चिकित्सा किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि मरीज का स्वास्थ्य हमेशा सबसे पहले आता है और यदि इस तरह के मामले की आवश्यकता होती है तो हमें इसी नियम का पालन करना चाहिए. आज से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है. ये शुल्क कस्टम्स डिक्लारेशन के अधीन आने वाली व्यावसायिक पार्सल्स और सैंपल्स पर लागू होगा. विदेशी श्रमिकों के संबंध में मॉरिशस और मडागास्कर मालागासी श्रमिकों की भर्ती और रोजगार को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए एक समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं. विदेश में नेपाल में तिब्बत की सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हो गई है. करीब 3916 लोग अब भी लापता हैं. इनमें 600 से अधिक श्रमिक शामिल हैं जिनके त्रिशूली नदी के किनारे जल विद्युत परियोजनाओं में मिट्टी से भरी सुरंगों के विशाल नेटवर्क में फंसे होने की आशंका है. और यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र में रात भर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हुए हैं.

0: घायलों में दो बच्चे भी शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। कौमबंबई नंबर दो वाकवा में 71 साल के 71 years old के श्री व्यामनरो बालू, श्री व्यामनरो बालू जो व्यामन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती गीता बालू के घर कौमबंबई नंबर दो वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8 of post 2। कृष्णा रोड लालमाटी में 81 साल की 81 years old की श्रीमती ओमवती दीनू, पैदाइशी नाम गुलजार और जो उमा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके बेटे जयप्रकाश दीनू के घर कृष्णा रोड लालमाटी से उठाकर गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। रोत 16 प्रोविडेंस का चिमिदितेर में 17 साल के 17 years old के जगन्नाथ गुरबिन जो आदि नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी माँ श्रीमती योगिता तपसी के घर ओहुत 16 प्रोविडेंस का चिमिदिते से उठाकर मोताय ब्लांश की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। लाशा पेलोदों तेरी एंसन रोड बोबासे में 90 years old के श्री शनमुगम नारायण स्वामी मुतुस्वामी जो बाजार पोतली रहते थे, जो अवेन्यू वेलिंगमोनोगन कैट्रोबोन रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3:30 बजे लाशा पेलोदों तेरियन संसरा रोड बुबासन से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: सवाल उनसे पूछा जाता है जो दिल के करीब ना होकर अजनबी जैसे जीते हैं, लेकिन जो दिल के करीब होते हैं, दिल के अंदर बसते हैं, उनसे क्या सवाल पूछना। बस हमें पता है कि बड़े प्यार से आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। दिन के 12:09, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करे। रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। फर्स्ट डे ऑफ यानी कि सेप्टेम्बर, और बस ये महीना आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज फ्लीटिंग, हाँ, लेकिन हमारा और आपका साथ कभी ना छूटे। चाहे वो सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, एनी टाइम रेडियो मस्ती आपके साथ। सो व्हाटएवर यू माइट बी, आई नो इट्स लंच टाइम, बोन अपेटी, शुभाहार सभी को। एंड नौकरी में होंगे या फिर फरमा रहे हैं आराम, 5499-1294 पर अभी तक वो इच नंबर है, पर आपके मैसेजेस या फिर व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए अपना या फिर अपनों के पैगाम।

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या गाना है, वो भी मुकेश जी की आवाज में। इसका एक और वर्जन है लता जी की आवाज में। 1968 में बनी सरस्वती चंद्र, और इस फिल्म के लिए दो अवार्ड्स, वो भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले थे, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी। बस बेस्ट ही बेस्ट सॉन्ग्स चला रहे हैं आपके नाम। आप ही भेजिए अपनों के पैगाम ऑन 5499-1294। तैयब साहब गुड आफ्टरनून, साथ में ज्योति शातुबिनागर से आशनी रेखा सुरेखा माधव फैमिली हमारे लिए भी थैंक यू सो मच। यहाँ पर गीतांजलि कहते हैं एंड लक्ष्मी त्रियोले से सब परिवार के नाम। धरती फिल्म का गाना हो जाए नीतू, ये गाना आपको पसंद है रफी साहब की आवाज में? आई एम श्योर यस, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे सदाबहार नगमे ओनली फॉर यू।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: हम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं बस उन सबको सलामत रहे, खुश रखे। दिल है कि मानता नहीं, नहीं मानता ना तो 5499-1294 पर फटाफट भेज दीजिए अपना नाम, अपने मैसेजेस। यहाँ पर काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। अंगितांजलि जी, आपकी तो इतनी फरमाइशें आ रही हैं, आपका गाना हमने चला लिया, बस सबको मौका देते हैं। सो वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294। कुमार सानू एंड अलका याग्निक तो नहीं, लेकिन हाँ अनुराधा पोडवाल की आवाज़ें डेफिनेटली बाद में सुनते रहेंगे। बहुत सारे गाने हैं आपके दिल को छूने के लिए।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऐसे गाने सुनकर दिल तो खुश हो ही जाता है, बस यादें उभर कर आ जाती हैं, कोई ना कोई कहानी तो जुड़ी रहती है।

हर एक गीत के साथ, है ना। वैसे मौसम कैसा है आपके यहाँ? इज इट स्टिल विंडी, रनी यानी कि रेनी, रनी रेनी या फिर सनी? ऑन 5499-1294 बताइए हमें। अगर आप रास्ते पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल। मौसम एकदम मस्ताना है, रोमांटिक है, गीतों का मौसम है यहाँ पर टिल 2 PM। लता जी और किशोर कुमार की आवाज़, लालच फिल्म से लिया गया।

0: वेरी गुड क्वेश्चन, क्यों ना खो जाए भाई.
1: रेट्रो रिदम.
0: जब मौसम इतना मस्ताना है, गीत इतने सदाबहार एवरग्रीन है, आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त हो तो क्यों ना खो जाए. थैंक यू सो मच इन सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स में नॉस्टैल्जिया लेन में खोने के लिए. नीतो आपके साथ टिल 2 PM. 5499-1294 पर थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए. नेक्स्ट गाना आपके नाम अब्दुल सहरावानु काम पर हैं. 4 बजे तक तो चली बोको हाश. साथ देने के लिए आपको भी थैंक यू. कैथोबोन से वीना संभू. और आज आपके लेट पति, उनका जन्मदिन है, उनका नाम तो नहीं लिखा लेकिन चले हाँ, दुखी तो ही होती है और बस उनको मिस भी कर रहे होंगे लेकिन उनकी अच्छी यादों को आप संजो कर रखे हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात है. सीता गीता भोलू राम परिवार शतु बिनागस से. एंड नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके लिए मिस्टर गौतम दीनू और दीना. एंड आप एक्स एम्बेसी स्टाफ है, एक्स फाइनेंस मैनेजर जो थे, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू दिल से. तो नेक्स्ट गाना आप कहती हैं प्लीज मेरे पूरे परिवार के नाम, स्पेशली आपके सभी दोस्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं और एमबीसी. तो चलिए ये गाना आपके लिए.

ऐसे अंदाज तो बस आप ही के हो सकते हैं रफी साहब, क्या क्या गाने गाए इन्होंने और किस अंदाज से गाया। जब आप आंख बंद कर, अगर आपने इस मूवी को देखी नहीं होगी, दुनिया फिल्म से लिया गया द 1968 मूवी, तो आप समझोगे कि इसमें शायद जॉय मुखर्जी, लेकिन नहीं, इसमें तो देवानंद साहब नजर आए थे, वो भी विजयंती माला के साथ। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, लवली गाना होली आई रे। आज होली नहीं है, लेकिन हम रोज दिवाली होली मना सकते हैं अगर हमारा दिल खुश हो। व्हाट से मेरी तमन्नाओं की तकदीर, ये गाना आपको पसंद है, विश्वानी दो मन फ्रॉम वाकवा, साथ में है इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता। आप एंजॉय कीजिए।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऐसे प्यारी प्यारे एवरग्रीन सॉन्ग्स को सुनकर मन को बड़ी खुशी मिलती है। 12:43 दिया है माय डियर, गुड आफ्टरनून, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रेंड सबीना फ्रॉम कविता दुफ्रे से, साथ में मोहन, रेखा, अंबिका, प्रेमिला, मालिनी, सबीना, यू मस्ट बी एट वर्क, ड्यूटी पर होंगे, सो बो कोराज एंड बोन अपेची। सुरेखा फ्रॉम कथक कुको एंड रामधन परिवार, अमरीका पुरुष राम पोटवी से है, प्रतिमा दन एंड पूरे परिवार, थैंक यू समारा, आपका भी साथ मिल रहा है और गानों में ऐसे मस्त खोई रहे, एंड ललिता एंड जीतन फैमिली एज वेल।

0: Retro Rhythm
1: RM2 Radio Musti Musti
2: आप ही के चॉइस, आप ही की फरमाइश पर रेशमा शेष मिष्टी हेमाक्षी रामकिशन फैमिली सुल्फिकिनो वाकवा से And let me wish Reena Pulwan a speedy recovery. जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ. ये है आपके सभी MRC besties की तरफ से ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं. चंद्रानी जी प्रीति चुलेनन हरक परिवार और सोजोंशे से साथ देने के लिए धन्यवाद.

बस एक ही तो सहारा है और है ये प्यार और प्यार करने वाले। थैंक यू सो मच। 12:55 बस एक बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। प्यार का दर्द तो है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, लेकिन अगर आपके लिए कोई बन जाए तो क्या बात है। एस जानकी अमित कुमार की आवाजें, आपके नाम चांदनी, पूरे परिवार और सभी लिसनर्स के नाम।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Ek baja hai. आइए सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे करुणा नमस्कार आपको
4: नमस्कार नीतू शाह सभी को नमस्कार छुट्टियों के बाद आज से राष्ट्रीय सभा के कार्य फिर से शुरू हुए नए विपक्षी नेता चेतन बाबूलाल का पहला पीएनक्यू स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की डॉक्टर जीटू हॉस्पिटल में हुई सर्जरी को लेकर रहा ये पीएनक्यू प्रधानमंत्री को संबोधित रहा चेतन बाबूलाल ने मुख्य रूप से ये जानना चाहा कि क्या इस सर्जरी के दौरान निजी के क्षेत्र का कोई डॉक्टर मौजूद था क्या निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाली सर्जरी में भाग लेने की अनुमति है अपने जवाब में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि निजी क्षेत्र के डॉक्टर की मौजूदगी कानून और मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्रतिबंधित नहीं है इसलिए उनके अनुसार बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं शराब या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग करने वाले चालकों के वाहनों की जब्ती साथ ही रोड रेज यानी कि सड़क पर गुस्से हिंसक व्यवहार के लिए एक नया अपराध भी जोड़ा जाएगा सरकार हमारे सड़कों पर नियमों को और सख्त करना चाहती है और तलब है कि इस साल के शुरू से अब तक 103 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो चुकी है इसी के तहत रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल आज राष्ट्रीय सभा में पेश किया जा रहा है आज सुबह 11:05 पर पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ सेंट्रल बल्कि लाइन बराक्स पहुंचे उन्हें सीसीआईडी ने मुस्तास्लिक मामले और उनके कार्यकाल के दौरान टेलीफोन टैपिंग तथा संचार को इंटरसेप्ट करने वाले उपकरणों की खरीद के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया है पूर्व प्रधानमंत्री से जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ की जा रही है इस दौरान उनके कानूनी सलाहकारों की टीम भी मौजूद है जिसमें वकील राव गुलबुल और आइवान कोलंडावेलू शामिल हैं एसपी एस्टिमेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप स्टेट एज पेंशन के तहत मिलने वाली अपनी पेंशन की अनुमानित राशि की गणना कर सकते हैं यह एप्लीकेशन अब सक्रिय हो चुका है विदेश में नेपाल में आई बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या 939 बताई जा रही है वहीं लापता लोगों की संख्या घटकर 3925 हो गई है ये जानकारी देश के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है और फुटबॉल जगत में लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है

0: अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर ल्योनेल मेसी ने कल जारी एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। फ्रीडोलिन सादाली वाकवा में 52 साल की 52-year-old बीबी शाहीन बानू लातुना पैदाइशी नाम बिकारी जो शाहीन से जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज सुपहर 3 बजे इनके बेटे रिद्वान लातुना के मकान फ्रीडोलिन सादाली वाकवा से निकाल कर पहले सादाली की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फिनरल टुडे एट 3 PM। कोबुम्बाई नंबर 2 वाकवा में 71 साल के 71-year-old श्री व्यामन राव बालू जो व्यामन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता बालू के मकान कोबुम्बाई नंबर 2 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामामेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

एग्जैक्टली 1:13 प्यार ही कर लीजिए, प्यार ही बांट लीजिए, इससे खूबसूरत एहसास और हो नहीं सकता। 5499-1294 पर गुड आफ्टरनून, एक बार फिर सबका प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: प्यार की सहा को बरकरार रखते हैं 1:19 गुड आफ्टरनून श्याम एंड बिचन फैमिली. आज पापा राजमन सुमारुआ जो रहते हैं मोताय ब्लॉश 84 इयर्स के हो गए हैं. पापा जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सुमारुआ और भिगाजी परिवार की ओर से एंड रेडियो मस्ती परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं. विनोद राठौर और अलका याग्निक की है राम शस्त्र फिल्म का रिमेम्बर द मूवी द 90s. आई थिंक इसमें सुनील शेट्टी नजर आए थे है ना.

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या गाना है, वो भी लता जी की आवाज में। इस फिल्म के जितने भी गाने रहे, 1966 की लव इन टोक्यो, ऑफ कोर्स आर आशा पारेख, जॉय मुखर्जी, और ये जो पियानो वाला धुन है, क्या बात है। हर मूवी में, जिस मूवी में शंकर जयकिशन ने काम किया, ये तो इट्स ओनली वन एग्जांपल। चाहे वो दिल के झरोके में ये भी होगा गाना, और बहुत सारे गानों मिला वो ऑर्केस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया, और बस गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। 1:32 5499-1294। वैसे इस गीत की फरमाइश तो आई थी, लेकिन नाम किसी ने नहीं भेजा। नॉट फेयर, नॉट फेयर। अगली बार अपना भी नाम भेज दीजिए। अविशा नाशले है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये है ममा मुन, पूरे परिवार एक ख्वाहियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बस जल्द ही खुशखबरी आने वाली, हम भी इंतज़ार करेंगे। तो इंतज़ार का फल मीठा होता है, जैसे कहते हैं। और आप आडू फैमिली, साथ देने के लिए थैंक यू। शाम जी है फ्रॉम सेबास्टेपुल, दीवाना सॉन्ग हमारे भी जय जय तुम्हारा। ये गाना आपको पसंद है, चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए। तब तक मुख्य

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.
2: वक्त तो बहुत कम है लेकिन रिक्वेस्ट फरमाइश बहुत सारी. चलिए हम कोशिश करते हैं. मिस्टर बाबू अनेतवा कैथोबोन से खास तौर से जो छोटे आपके नाती पोते हैं वृद्धिया येशा और गिरीश और सभी परिवार. तनु कहती है फ्रॉम यूनियन पार्क प्लीज नेक्स्ट गाना मेरे हबी के नाम बच्चे हैं संजना और अनीश और आपके पूरे परिवार के लिए चलाते हैं डेफिनेटली. गोली गोजा टू यू बबीता बुना.

0: जैकी श्रॉफ, रिमेम्बर दिस मूवी, काश काश ऐसे मूवीज और बनते। लवली गाने देश पांडे, यानी कि अनुपमा देश पांडे और किशोर कुमार की आवाजों में।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

आपकी जय जय हो जाए, सब कुछ मंगलमय हो, यही तो हम कामना करते हैं। 1:55 टमटी से बाय बाय, थोड़ी देर में परी आ जाएगी लेकर बॉम्बे टॉकीज। मुलाकात अब होगी कब, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग को 5 बजे आपको उठाने जगाने आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे अहेड, स्टे सेफ।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: 2 baje. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको
5: नमस्कार नीतिशा श्रोताओं को भी नमस्कार राज्यसभा की कार्य आज दिन के 11:30 बजे से जारी रखे जा रहे हैं विपक्ष नेता का PNQ आज प्रधानमंत्री को संबोधित रहा जिसका संबंध स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी पर केंद्रित था चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशंस में शामिल होने की इजाज़त है अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टरों की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है हर साल हजारों श्रद्धालु मॉरिशस में आस्था और भाईचारे के मसीहा कहलाए जाने वाले पैर नवाल के मकबरे तक की पदयात्रा करते हैं सेंट क्वा में विशेष प्रार्थना सभाएं लगती हैं और देश के विभिन्न इलाकों से वहां तक लोग यात्रा करते हैं 2026 के लिए इस तीर्थ यात्रा का विषय रखा गया है ऑनसाम एक पहला बार पोएन सोसिएते प्लीजिस ए फातेनेल मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर जोकिया हैद का कार्यकाल पूरा हो रहा है उन्होंने आज काठमांडू में गणराज्य के उपराष्ट्रपति ओबे हंगले से विदा लिया दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में पिछले बुधवार को उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1000 पार कर गई है 3900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनके जीवित बचे होने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं 600 से ज्यादा लोग एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे हैं अंदर हवा भेजने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार

अशोक समाचार सुनिए। Avenue Villa Morogen, 4 bonne mai. Avenue Villa Morogen, 4 bonne mai. 90 sal ke 90 years old. Shri Shanmugam Narayan Sami Mutusami. Shri Shanmugam Narayan Sami Mutusami. Jo Port Louis ke bazar mein Marchand L'Artisan naam se zyada jaane jaate the. Inki mrityu ho gayi hai. Inki arth thi aaj din ke 3:30 baje. Inki arth thi aaj din ke 3:30 baje. लाशा पेलो दौंत एलियन सन्स रॉयल रोड बोबा सेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 17 साल के 17 ईयर्स ओल्ड के श्री जगन्नाथ गुरबीन जगन्नाथ

0: कोरबिन जो आदि नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के ढाई बजे, केयर थी आज दिन के ढाई बजे इनकी माँ श्रीमती योगिता तपसी के मकान नंबर 16 पोविदाउंस कौचे मिली थी, ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताम लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। कृष्णा रोड लालमाटी में, कृष्णा रोड लालमाटी में 81 साल की 81 years old श्रीमती ओमवती दीनू, श्रीमती ओमवती दीनू पैदाश नाम गुलजार जो उमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी आज दिन के 3 बजे, इनके बेटे श्री जयप्रकाश दीनू के मकान कृष्णा रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM। बोआडवाजो रोड ग्रोव न्यू ग्रोव में 73 साल के 73 years old श्री गिरजानंद सिंह बोरी जो श्याम लक्ष्मण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। आज शाम चार बजे इनकी पत्नी श्रीमती शांता बोरी के मकान बोआडवाजो रोड ग्रोबियो न्यूगोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: More music in the mix.
2: आज आजादी है।
3: Bombay Talkies, Radio Musti.

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, that was in the beautiful voice of Jubin Nautiyal. इसी गाने के साथ शुरुआत हुई है आखिरी इश्क from the film धुरंधर. हमारी सभी listeners जो साथ दे रहे हैं. 2:10. I do hope that September is going to be very kind to all of us. पहला दिन September महीने का और it's a divine month. ये तो हम जानते हैं. जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, इतने सारे celebrations होने वाले हैं. और celebrations के साथ हमारा music तो continue रहता है on the waves of Radio Musti. सभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ and it's time for your Bombay Talkie. साथ देने के लिए शुक्रिया ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Join the RM2 team this Friday, 4th of September, for an open day at the University of Technology Mauritius, La Tourquenique, Pointe-aux-Sables. RM2 will be live as from 11 a.m. to 1 p.m, so don't miss out.
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So, well, that was the beautiful Sari song from the film Dhamaal 4. Ye gana tha aap sabhi ke liye and of course for all our beautiful ladies jo hamesha saath deti hain on Radio Masti. Chaliye dosto, Govinda ki patni Sunita Ahuja OTT ke reality show Lock Up Sach Ya Saza ke zariye apne reality show mein unhone debut kiya. Matlab ye jo reality shows ka jo genre hai wahan par unki shuruaat hui aur bite dino isi show se unhone khoob lokpriyata batori. Ab बाद गोविंदा भी रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्चित रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन में वो शिरकत करते नजर आएंगे. गोविंदा इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. पत्नी सुनीता आहूजा ने उन पर किसी अन्य हीरोइन के साथ अफेयर होने जैसे आरोप लगाए हैं. शादीशुदा जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ावों के बीच गोविंदा को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है कि वो रियलिटी शो में

0: और कंटेस्टेंट अपना डेब्यू करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गोविंदा से इस शो के लिए संपर्क किया गया है और वो इसमें शामिल होने के इच्छुक है। अब क्या वो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। गोविंदा से राइज एंड फॉल 2 रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MX प्लेयर के इस शो में जो उनकी बातचीत है गोविंदा के साथ, यानी कि मेकर्स की जो बातचीत है गोविंदा के साथ, वो अंतिम दौर में है और अगर बात पक्की हो जाती है तो गोविंदा इस शो में एज अ कंटेस्टेंट नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फॉर्मेट का दूसरा सीजन मशहूर हस्तियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन टीम कंफर्म करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल से जुड़ी जानकारी को अंतिम रूप दे रही है और गोविंदा का इसमें शामिल होना लगभग तय है, लेकिन अभी तक इसे लेकर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है या फिर ऑफिशियल पुष्टि है वो नहीं की गई है। सो थोड़ा सा इंतजार, लेकिन सुनने में आ रहा है दैट गोविंदा के फैंस उन्हें देख पाएंगे रियलिटी शो में। अब रियल लाइफ में इतने उतार चढ़ाव चल रहे हैं, सो रियलिटी शो का हिस्सा बनकर क्या कुछ और बातें सामने आती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: RM2 Radio Mastin Feel

0: Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentinien Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर।

0: The time is brought to you by
1: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
0: North, South,
2: 103.5.
0: East, West,
2: 96.4.
0: Center,
2: 99.4.
3: RM2, Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा की कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। विपक्ष नेता का PNQ आज प्रधानमंत्री को संबोधित रहा, जिसका संबंध स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी पर केंद्रित था। चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशन में शामिल होने की इजाज़त है। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टर की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है। हर साल हजारों श्रद्धालु मॉरिशस में आस्था और भाईचारे के मसीहा कहलाए जाने वाले पेलावाल के मकबरे तक की यात्रा करते हैं। सेंट जॉन में विशेष प्रार्थना सभाएं लगती हैं और देश के विभिन्न इलाकों से वहां तक लोग पद यात्रा करते हैं। 2026 के लिए इस तीर्थ यात्रा का विषय रखा गया है। ओसाम एक पेलावाल पोएन सोसाइटी प्ली जीस एक फातियानल। मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर जुके अहद का कार्यकाल पूरा हो चला है। उन्होंने आज काठमांडू में गणराज्य के उपराष्ट्रपति रोबे हंगले से विदा लिया। दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में पिछले बुधवार को उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1000 पार कर गई है। 3900 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनके जीवित बचे होने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। 600 से ज़्यादा लोग एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे हैं। अंदर हवा भेजने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 56 आबेदुलाकाई क्यूपिप रोड में, नंबर 56 आबेदुलाकाई क्यूपिप रोड में 72 साल के 72 years old श्री मुनीश्वर द्वारका। श्री मुनीश्वर द्वारका जो धीरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले MBC के कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 56 आबेदुलाकाई क्यूपिप रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। पियती लेन कास्टेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती धन कुमारी चुनी पैदाशी नाम रामचरण, जो सरिता चुनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे श्री हरीश चुनी के मकान पियती लेन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले बोयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
6: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

So well friends, आप सभी का हम स्वागत करते हैं 3:15 and that's your Bombay Talkies. B-Town की खबरों के साथ कुछ latest tracks आपके लिए चला रहे हैं. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक. साथ देने के लिए शुक्रिया. Warm welcome. That's your RM2 Radio Masti. Here we go.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: सुबह 3:52 है दोस्तों और यहाँ पर डाविसन हमारा साथ दे रहे हैं आप लाल माटी से अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम और कहते हैं थैंक यू फॉर द लवली सॉन्ग्स स्पेशली गुलाबी साड़ी में तो लग रही कमाल ये तो हम आपके लिए गा सकते हैं रोशनी वैसे आपसे मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन आई एम श्योर दैट जितना प्यारा आप लिखती हैं इतने प्यारे मैसेजेस यहाँ पर पहुँचते हैं आपका दिल उससे भी प्यारा है सो वेल रोशनी अगला गाना हम आपके नाम प्ले करेंगे सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम रेडियो मस्ती के साथ साथ ही यहाँ पर ललिता जीतन कहती हैं दैट मैं तो वापस आ गई हूँ काम से और अभी के लिए एंजॉय कर रही हूँ प्रोग्राम एंड गर्मा गर्म इलायची चाय विथ बनाना केक सो वेल आई गेस दैट्स योर परफेक्ट टी टाइम जहाँ पर गाने तो चल रहे हैं आपके लिए और ललिता जी आपकी ओर से गाना सभी जीतन परिवार के नाम साथ देने के लिए शुक्रिया हमारे सभी डियर लिसनर्स का और नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय और आ रही है गिनीशा लेकर योर रफ्तार वाइब्स आपसे मुलाकात होगी जल्द यानी कि यहीं पर कल सेम प्लेस सेम टाइम लेकिन सेम टाइम से पहले भी हम आपसे मिलने वाले हैं यानी कि इन योर मस्ती मॉर्निंग सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज सो मुलाकात होगी कल ऑन वेडनेसडे तब तक के लिए एंजॉय योर ट्यूजडे रेडियो मस्ती के साथ हैव अ ग्रेट टाइम टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. The Musty. The Musty.
4: आज ये सुनते हैं समाचार आदित्य के साथ. नमस्कार.
5: नमस्कार की इंशा श्रोताओं को भी नमस्कार. प्रवीण जगनाथ ने आज लाइन बैराक्स में 2 घंटे बिताने के बाद वहां से प्रस्थान किया. वे प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा टेलीफोन सर्वेलेंस उपकरण की खरीद के संबंध में पूछताछ के लिए औपचारिक समन मिलने पर वहां गए हुए थे. अक्टूबर 2024 में मुश्ताक लीक्स के बाद से ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहा है और पिछले साल राष्ट्रीय सभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारियां भी दी गई थी. अपने प्रथम PNQ में विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने आज प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी के बारे में प्रश्न किया. चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशन में शामिल होने की इजाज़त है. अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि क्या कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टर की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है. हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सरकार ऐसी प्रक्रिया के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है. मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर जोखे अहद का कार्यकाल पूरा हो चला है. उन्होंने आज काथोबोन में गणराज्य के उपराष्ट्रपति अकोबिया हंगले से विदा लिया. दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के खिलाफ लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ है. इसके तहत शोपो प्रांत के किसांगी के आधिकारिक तौर पर एक टीकाकरण अभियान शुरू किया है. इस अभियान की शुरुआत खासकर स्वास्थ्य अधिकारियों और वायरस से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को लेकर किया जा रहा है. ये टीका सबसे पहले उन्हें लगाया जाएगा. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आगे आ दीजिए. नमस्कार.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.
6: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: ऑल राइट इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: बड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग,
1: कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: बिल्कुल जी, इसलिए तो लड़कियां लड़कों जैसे नहीं होती और लड़के लड़कियां जैसे नहीं होते, लेकिन जैसे भी हैं हम लोग अच्छे हैं और आप भी अच्छे हो। 4:14 हो चुके हैं, बिल्कुल मस्ती लोग। कैसे हो आप? ऑफिस का काम ऑलमोस्ट डन और अब टाइम है घर की तरफ निकलने का। सो विशिंग ऑल ऑफ यू फॉर अ गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। बिल्कुल जी, रोड पे ट्रैफिक होगा, सिग्नल्स होंगे, थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी होने वाला है आप लोगों के साथ, लेकिन टेंशन लेने का नहीं क्योंकि देने का है, क्योंकि आपके साथ है रफ्तार वाइब्स, जो फिल्मी राइज जहाँ पे गणेशा साथ निभाएंगे रात के 7 बजे तक। सो माय डियर लवली लिसनर्स, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए और अपने ड्राइव होम को बना दो फुल ऑन म्यूजिकल। चाहे आप हाईवे पे हो या ट्रैफिक में फंसे हुए हो, रेडियो मस्ती के बीच आपके मूड को फ्रेश रखने ही वाले हैं। आई हैव गॉट यू द बेस्ट सॉन्ग सिलेक्शंस फॉर दिस आफ्टरनून। तो चलो जी, घर का सफर शुरू करो और रफ्तार वाइब्स के साथ बस एंजॉय करते रहना। सो थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती, हियर वी गो, लेट्स हिट दैट दिस वन माय वे।
3: RM2 Radio Mustang.

बिल्कुल जी, बताएंगे, दिल भी बताएंगे, खोल के बताएंगे आप सभी लोगों को कि अभी हमारे पास एक वाउचर है टू गिव अवे. यस, वी गॉट योर टिकट राइट नाउ राइट अवे दैट यू कैन विन टू वॉच द कॉन्सर्ट शान लाइव इन मॉरिशस.

तो चलिए जी टाइम बीता चला जा रहा है 4:34 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू इग्निशन राइट नाउ ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। एंड यस माय डियर एंड द लवली लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रही हैं। कभी कभी ना पूरा दिन परफेक्ट नहीं होता है, कुछ प्लान्स कभी फेल हो जाते हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड करते हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं होती हैं। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर दिन का एंड एक नई बिगिनिंग का चांस होता है और हमेशा ऑन रेडियो मस्ती कुछ ना कुछ तो हम लेकर ही आते हैं आप लोगों के लिए। सो फिलहाल के लिए यस आई हैव गॉट यू अ टिकट टू गिव अवे माय डियर एंड लवली लिसनर्स टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव। सो द गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.nu एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू क्लोज योर आईज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी ऑन दैट वेरी स्पेशल डे। इट्स अ जर्नी फिल्ड विद मेलोडीज, मेमोरीज एंड टाइमलेस वॉइस ऑफ शान। एंड नाउ आरएमटी रेडियो मस्ती आपको वो मौका दे रहा है टू विन एंड टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक लाइव। सो प्ले विद आरएमटी रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड टिकट जहां पे आप जा सकते हैं देखने के लिए द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कॉन्सर्ट, वन वॉइस वन स्टेज वन अनफॉरगेटेबल नाइट एट SVICC ऑन द 5th of September 2026 एज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu। सो शान इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट बिलव प्ले बैक सिंगर, नोन फॉर हिज स्मूथ जो है सोलफुल है वर्सिटाइल वॉइस है एंड उन्होंने रोज किया है टू प्रोमिनेंस इन द लेट 1980s एंड एक्चुअली वो बन गया है फैमिली ऑफ वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड इवन फील गुड गाने। ओवर द इयर्स शान ने डिलीवर किया है न्यूमरस मेमोरेबल जो हिट्स across Hindi cinema and Indian pop music, earning a strong fan following across generations and in the world. Unke jo warm vocal style hai, effortless stage hai, presence aur jo ability hai to connect emotionally with audience have made him a popular live performer. So enjoy the charismatic energy, soulful voice of timeless melodies of Shan live on stage in Mauritius on the 5th of September 2026 as from 8 PM. So my dear and lovely people, abhi puchenge ek bahut hi aasan sa sawal, aapko sahi जवाब देना है ऑन 5499 12 94। आर यू रेडी टू विन अ गोल्ड टिकट? तो ध्यान से सुनेगा जरूर। विच ऑफ दीज इज अ फेमस सॉन्ग ऑफ द सिंगर शान? विच ऑफ दीज इज अ फेमस शान सॉन्ग? ए जब से तेरे नैना, बी तुम ही हो, या सी कल हो ना हो। इज इट जब से तेरे नैना, ए बी तुम

0: Avatar vibes. Filmy rides.
1: RM2.
2: Sports magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: Check your time, it's a sharp 4:40 और अभी ना टिकट कता के लेके जाएंगे अब स्पोर्ट्स की दुनिया में वेव स्पोर्ट्स गुरु अरविंद जी
5: गुड आफ्टरनून आपको गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स टिकट कटेगा कहां का ये आज रात तक पता चल जाएगा क्योंकि खिलाड़ियों का जो आना जाना हो रहा है इट्स डेडलाइन डे टुडे डेडलाइन डे ये एक टर्म है टू रिफर टू द लास्ट आवर्स लास्ट डे ऑफ ट्रांजैक्शंस ये फुटबॉल में होता है और जैसे ही ये ट्रांसफर बाजार ताला लग जाएगा तो उसको खुलने में महीने लगेंगे इस बीच खिलाड़ियों को न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है यहाँ जब मैं आ रहा था तो कुछ दोस्तों ने कहा आपसे पूछने के लिए कि सभी टीमें खिलाड़ी खरीद रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्या हुआ
4: आप फिकर मत करना वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट फॉर द लास्ट
5: ओके मैंने विशाल से भी पूछा विशाल ने कहा हम लास्ट मिनट इंतजार नहीं करते

0: बिल्कुल, और एक्चुअली जो भी प्रिपरेशन करना था ना हमने
1: पहले
0: कर
1: से कर लिया है। यू गॉट सम गुड प्लेयर्स हैं, गुड प्लेयर्स जो जिससे जिनसे पैसा वसूल होने लगा है,
0: और हम ग्रीडी नहीं ना, वी नीड टू लीव सम फॉर अदर्स एज वेल।
1: ओके, हाँ अब देखिए, अब जैसे आर्सेनल ने कल अपना मैच जीत लिया, लेकिन एस्टन विला में प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स, खासतौर पर उसका जो गोलकीपर है उसका नाम है सुजुकी। हाँ, he's from Japan, Japan के नेशनल टीम के लिए खेलता है, और yesterday he had a great match, बहुत बार अपनी टीम को बचाया, लेकिन साका का गोल, अब आर्सेनल आ गया है इन द पैक विद 6 points, सो डेडलाइन डे कल द बिग ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, फाइनली आखिरकार 126 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर लिवरपूल ने बाकोला को साइन कर लिया, बाकोला एला। अब बाकी टीमें जो हैं, इट्स गोइंग टू बी बिग स्पेंडिंग फेर्नांडेज को लेकर भी, एंजो फेर्नांडेज, मैनचेस्टर सिटी हैज ओपन टॉक्स विद चेल्सी, और चेल्सी अपनी ओर से कुने को खरीदना चाहता है, सो एक तरफ फेर्नांडेज जाएगा, पोटेंशियल मूव टू मैनचेस्टर सिटी, इट इज प्रोग्रेसिंग, और मैनचेस्टर सिटी में चेल्सी उधर कुने को लाना चाहता है, जो काफ़ी ट्रांजैक्शंस हुए लीग चैंपियनशिप में भी, अब काफ़ी ऑप्शंस भी ढूंढे जा रही हैं, और अभी ये भी खबर है कि वॉल्टर मेड यूवेंटुस में चला गया है, और मेडिकल पूरा करके न्यूकासल यूनाइटेड से वो आया है। क्रिस्टल पैलेस ने डिफेंडर अहानो को साइन किया है, हुर्नेस्ट अहानो अटलांटा से, 18-year-old चेल्सी में गया था। ओके, अब दूसरा और खिलाड़ी आएंगे, डर्बी पैलेस के ओजो को साइन करना चाहता है, ये भी इन दी टॉक, अभी देखेंगे आज रात तक बहुत कुछ होने वाला है, और मैक्टोमिने स्कॉटलैंड के गेम्स, ये इस महीने से मैक्टोमिने को बेच रहे हैं नहीं। एस्टन विला राइट इन द मार्केट, एस्टन विला जिसने सेनेगल के विंगर इब्राहिम एम्बाए को साइन किया है फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मेन, इंग्लिश का सेंटर बैक टेलर, इंग्लैंड का सेंटर बैक टेलर हाउड बेलिस साउथहैम्पटन से आ रहा है एस्टन विला में। एम्बाए 18 साल का, फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मेन 47 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जबकि हाउड बेलिस के लिए 29 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। एम्बाए को लिवरपूल भी खरीदना चाहता था, और लेकिन जब बाकोला आ गया तो शायद वो नहीं आना चाहता। विला इस सीजन 280 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च कर चुका है, लेकिन उनाई एमरी के काफी की प्लेयर्स चले गए, तो इसीलिए बैलेंस करना पड़ रहा है, कुछ खिलाड़ियों को बेचकर कुछ खिलाड़ियों को खरीद कर। इधर पैलेस और संडरलैंड दोनों के बीच टकराव मैदान में नहीं बल्कि ट्रांसफर बाजार में, ये लोग लियों के मालिक फुफाना को साइन करना चाहते हैं, इट विल बी अराउंड 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, तो जाएगा तो कहां ये देखना है। एवर्टन ग्रिलिश को फिर से साइन कर रहा है, ये एक लोन डील होगा। हल सिटी भी सक्रिय है, दे हैव साइंड इलियास अंसा, ये यूनियन बर्लिन से 12 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जबकि मुड्रिच स्पर्स में आ गया, और सांचेज चेल्सी का गोलकीपर वो कुमु में जा रहा है, तो काफी डील्स आज रात होंगे। लेट्स चेक और कौन से होंगे, स्कॉटिश प्रीमियर लीग में भी काफी डील्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे फाबियो वियेरा आर्सेनल से एम्बू में गया, कोतुताकाई टोटनहम हॉटस्पर से सेंट रुडेंस पर लोन में, फिर तावारेस ब्लैकबर्न से विस्ला टीम में, मार्क गुई चेल्सी से आरबी लेप्ज़िग, और लुइस एमेडो संडरलैंड से क्लेरमों में जा रहा है। तो कल सुबह यू विल हैव द फुल लिस्ट, जो जो खिलाड़ी आएंगे और जिनको बेचे जाएंगे। आज इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में काफी मैच हैं, लिंकन ब्लैकबर्न, पोर्टमूव डर्बी, प्रेस्टन ब्रिस्टल सिटी, शेफील्ड यूनाइटेड, बोल्टन, स्वानसी वाटफोर्ड, वेस्ट हैम वुल्व्स, दैट्स इंटरेस्टिंग, बर्मिंगहम साउथहैम्पटन, और स्टोक नॉरविच। लीग वन के भी मैच हैं, यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग का भी एक मैच खेला जाएगा, ये आज के मैच हैं। कल स्कॉटिश प्रीमियरशिप के मैच खेले जाएंगे, यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग के मैच भी, और टेनिस में भी काफी कुछ हो रहा है इन दी यूएस ओपन, कुछ रिजल्ट जो आज सुबह सुबह आए, लेट्स चेक, शेल्टन की जीत ग्रिस्पू पर, ओसाका ने जाकारोवा को हराया, मैच गोइंग ऑन, श्वातेक ने वांग को हराया, फिर चाफोए की जीत हुई दाम पर, मुसेती थोड़ी देर बाद फेरी के खिलाफ खेलेगा, ओगा अलिसीमे ने हिचकाता को हराया है, सेकुंडोलो विल बी अगेंस्ट मिलोजिच, मैनसिच की जीत, और मैच आज रात कल सुबह

0: के लिए जाएंगे आपको रिजल्ट कल सुबह हम लोग देंगे सो बिग हैपनिंग द बिग थिंग विल बी आज रात कौन कहां जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद दे आर नॉट इन द मार्केट अभी के लिए पैनिक बाइंग नहीं करते वी अक्सर दैट
1: तैयारी हमारी हो चुकी है भाई साहब आप मान लीजिए
0: नहीं वही सूझबूझ कर अच्छी तरह से शुरू से
1: लास्ट वीक थोड़ा को हमने दे दिया ना एक हिंट कि क्या हो सकता है
0: बहुत कुछ होगा लिवरपूल शॉपिंग शायद नहीं अभी तक दे आर वेटिंग फॉर सम प्लेयर्स लेट्स वेट एंड वॉच एक खिलाड़ी को साइन करेंगे क्योंकि गाकपो इज वेटिंग अगर गाकपो को तभी बेचा जाएगा अगर कोई नया खिलाड़ी आएगा तो
1: लेकिन ये भी हो सकता ना जो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द लेफ्ट ओवर्स
0: शॉट गुड वन
1: नो नो
0: गुड वन
1: बोलेंगे कि नहीं आज तो वोट बोल रही है चुप कर
0: थैंक यू
1: सो मच
2: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB pour célébrer sa grande ouverture là méga promo le plein produit morbe à portière 25 roupies granit à portière 10000 roupies lavabo roche pour mur robinetterie sanitaire toilette baignoire et beaucoup les autres encore pas rater sa méga promo vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco boulet blanc à côté MCB Flac numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53
3: This magazine was brought to you by Quality Déco, the floor expert.

थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर राइम टू रेडियो मस्ती गाइस चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:54 हो चुके हैं एंड यू आर लिसनिंग टू गिनीशा राइट नाउ। जी हां दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक सवाल जहां पे सही जवाब देने पर यू कैन विन अ गोल्ड टिकट टू वॉच द बिग कॉन्सर्ट हैपनिंग वेरी सून इन मॉरिशस ऑन द 5th of September 2026 आज फ्रॉम 8 PM एट SVICC Pi एंड इट्स गोना बी शान लाइव इन कॉन्सर्ट। हमने पूछा था एक बहुत ही आसान सा सवाल कि इन गानों में से कौन सा गाना जो है शान सिंगर का बहुत ही ज्यादा फेमस है, इज इट ए जब से तेरे नैना भी तुम ही हो या सीकल हो ना हो, एंड द राइट आंसर इज जब से तेरे नैना। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन एज पर द रूल ऑफ द गेम वी कैन हैव ओनली वन लकी विनर और आज का हमारा लकी विनर है हु इज विनिंग अ गोल्ड टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव शान इन मॉरिशस इज फवाज जिंगूर जो है ग्लेन पार्क वाकवा से। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू।

0: रेडियो मस्ती।
1: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ला की आगे का हो सकी, एगो दुर्घटना लुतो अपान हो सकी, ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला। पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नई करे के चाहे। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नई करे के है, काहे की हमनी के लासी हौस तोहर ख्याल रखेला। टोइंग की सुविधा, एगो लुतो ऑप्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव, सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा। और दूसर नुकसान जैसे तूफान, बाढ़, आग, मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतो के चाबी भी गवा दिला, सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी। जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकोम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
3: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपनी पूजा को अधिक पवित्र और आनंदमय बनाएं और KG क्लासिक प्योर घी के साथ एक सदी से भी ज्यादा भारत का असली घी मंडी पर उपस्थित है। इम्पोर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आर रैपिड सर्विसेज लिमिटेड। फोन नंबर 4128468। RKG क्लासिक प्योर घी विशेस यू अ पायस गणेश चतुर्थी।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: तो कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन. हेलो जी, वेलकम ऑन बोर्ड, जहाँ पे गिनीशा साथ दे रही है इन दिस ब्यूटीफुल शो रफ्तार वाइब्स, जहाँ पे हर आफ्टरनून 4 to 7 हम लेके जाते हैं आपको अपने फिल्मी राइड्स पर. सो माय डियर एंड लवली म्यूजिक लवर्स, कहाँ तक पहुँचे? हाँ जी, ऑफिस से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठे हो, बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, या सब ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जो भी साथ दे रहे हैं आप, बस आराम से बैठ जाइए और अच्छे अच्छे म्यूजिक आप मजा ले लीजिए, और जो ड्राइव कर रहे हैं आराम से ड्राइव कर लीजिए, एंड कीप ऑन एंजॉयिंग दिस लवली गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. सो ऑन 5499124 पर आई हैव गॉट सम लवली डेडिकेशंस. सिलेक्शन बहुत ही सुपर से भी ऊपर है गिनी, थैंक यू. और आपकी नी स्नेहा, शी इज सेलिब्रेटिंग हर 29th बर्थडे, सो आई जस्ट वांट टू विश अ मैजिकल बर्थडे.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू। एंड वो आपके जो प्यारी सी मैसेज आए हैं जो आपको विश कर रहे हैं, वो बोलते हैं वी विश यू हैप्पीनेस, हेल्दी लाइफ एंड लव, सक्सेस एंड ब्लेसिंग। ये है मौसी निशा, मौसी निशा एंड निशा, यश, निष्टि रॉय, वैष्णवी, परिणीता, and we have mama sandhya, papa suraj, shanvi, shamiksha and krishan, pati nirmal, sanju, sasura, sanjeev, sasu mamita, ranjit families ki taraf se lots of love and happiness to you my dear, and to all those who are celebrating their birthdays today, I just want to wish you a magical birthday on our RM2 radio masti. Hey, I just want to dedicate the next one rebecca ki taraf se unke pyar unke husband arshad ke liye. Here we go.
2: RM2 radio masti.

तो चलिए जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग ईच एंड एवरी सॉन्ग जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हेलो मिस्टर ड्राइवर, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना, एंड आई हैव गॉट यू द नेक्स्ट वन टू ऑल दोस हु आर स्टिल एट वर्क। हां जी, मुझे पता है, मन तो कर रहा है कि हम भी घर पे जाए वापस, लेकिन दिल चाहता नहीं करता, क्योंकि गिनीशा इज हियर ऑन द माइक साथ देने के लिए रात के 7 बजे तक। सुबह को हाजिर हूं।

0: RM2 रेडियो मस्ती फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बिल्कुल जी, आपके फैशन टिप्स लेकर आते हैं एवरी आफ्टरनून इन योर आफ्टर वाइब्स। एस माय डियर लवली लिसनर्स, जैसे कि आपको बताया कि फुल ऑन तैयारी चल रही है फॉर गणेश चतुर्थी। बिल्कुल जी, तो मैं आपको बता दूं कि फेस्टिव ग्लो के लिए अगर आप ब्राइट कलर्स लाइक रेड, पिंक, ऑरेंज या येलो चूज करेंगे तो बप्पा की सेलिब्रेशन में फुल फेस्टिव वाइब्स लेकर आएंगे। और साड़ी हो या लहंगा, थोड़ा ट्रेडिशनल टच जरूर ऐड करें। सिंपल आउटफिट जो है स्टेटमेंट लुक बन जाते हैं। और फूलों वाले जो गजरे होते हैं ना उसके साथ, ओए हाय मेरी जान, स्टाइल को फेस्टिव बनाएं और एलिगेंट भी और ब्यूटीफुल भी। जुमकास और बैंगल्स ना भूलें और कंफर्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा आउटफिट जो है आप चूज़ करें जिसमें आप पूजा और सेलिब्रेशंस दोनों कंफर्टेबली एंजॉय कर सके। सो ट्रेडिशनल प्लस ट्रेंडी का परफेक्ट मिक्स हमेशा हमेशा खूबसूरत ही लगते हैं।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाई हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।

0: सच ब्यूटीफुल एंड लवली गाने. जी हाँ दोस्त, दैट्स सोनू निगम फॉर यू. और ये है मेरे ढोलना 3.0 सोनू वर्शन स्पेशली आप लोगों के लिए. तो चलिए जी, अभी के लिए आपको याद दिला दे कि थोड़ी देर बाद हम बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद गुड म्यूजिक कंटिन्यूस. स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: शॉरी बड़कों मोनू बट्टे का केक नाचेगी पिंकी फुल डोले पोस्टर हो.
1: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन द रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, इट्स 6 पीएम.
2: RM2 रेडियो मस्ती.
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत. शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करीब 500 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें कुल 647 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है. परियोजनाएं पूरी करने पर 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ये जानकारी दी. विपक्ष नेता के रूप में अपने प्रथम पीएनक्यू में चेतन बाबूलाल ने स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी का मुद्दा उठाया. प्रधानमंत्री ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जरूरत से इनकार किया. 6,000 से ज्यादा मामले और 2,900 मौतें. कोंगो में इबोला गणराज्य का गंभीर प्रकोप जारी. उधर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के 7 दिन बाद मरने वालों की संख्या 1,000 पार कर गई. नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत अभी लगभग 500 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन

0: रुपए का निवेश हुआ है। इनके पूरा होने पर 25,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राव गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ये जानकारी दी। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर नवीन राव गुलाम ने कहा कि 2025 के बाद से स्थिति में सुधार आया है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। पेश है सिल्वाना पाईमामन और करुणा लालू की रिपोर्ट।
1: उपलब्धता और डॉलर की मांग पर सांसद रुकनी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार देखा गया। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है।
2: Nonetheless, we must agree that the forex market remains tight, Madam Speaker.
1: देश में कंपनियों और परिवारों के पास मौजूद विदेशी मुद्रा की मात्रा तथा 2025-2026 में निर्यात उन्मुख कुछ प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए दिखाई दे रही विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रोक कर रखना भी हो सकता है, जिससे लेन देन के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति सीमित हो जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में एक संरचनात्मक असंतुलन भी मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में आयात में हुई तेज वृद्धि, जो पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई उपभोग आधारित आर्थिक मॉडल का परिणाम थी, ने विदेशी मुद्रा की मांग में ज्यादा और लगातार बढ़ता हुआ अंतर पैदा किया। विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में वृद्धि इस मांग की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाई, जिसका असर घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। पहला, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम के तहत विला की बिक्री से प्राप्त राशि में से कम 85% राशि को मॉर्शन रुपए में परिवर्तित करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, ऐसी कंपनियों के लिए जिनके कारोबार का कम से कम 50% हिस्सा विदेशी मुद्रा में होता है, अपने सभी टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना अनिवार्य किया गया। तीसरा, 1 अक्टूबर 2025 से प्रति पर्यटक प्रति रात 3 यूरो का पर्यटन शुल्क लागू किया गया, जिसने बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने में योगदान दिया। चौथा, आवास सेवाओं पर प्राप्त वीएटी का 50% विदेशी मुद्रा में जमा करना अनिवार्य किया गया। सांसद एडुआने रॉड्रिक्स के लिए आवंटित बजट और धन के फिर से आवंटन के बारे में सवाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल में रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली ने वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए 548 मिलियन रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, क्योंकि उसके पास उपलब्ध संसाधन समाप्त हो चुके थे। इस मांग की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय ने रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली को 300 मिलियन रुपए की अतिरिक्त राशि देने पर सहमति जताई। वित्त मंत्रालय ने रीजनल असेंबली के विकास बजट की भी समीक्षा की और पाया कि बजट के क्रियान्वयन की दर कम थी। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि रीजनल असेंबली संभवतः चालू बजट वर्ष के अंत तक अपने पूरे विकास बजट का उपयोग नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भी यही रुझान देखने को मिला, जब रीजनल असेंबली अपने विकास बजट का औसतन लगभग 73% ही खर्च कर पाई थी। सांसद जोआना बेलांजे ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के स्तर पर निजी निवेश परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि ईडीबी के पास 523 परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इन 523 परियोजनाओं में से 512 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। बाकी 11 परियोजनाएं जिनकी कुल राशि 15.7 बिलियन रुपए हैं, या तो निलंबित हैं या रद्द कर दी गई हैं। अनुमान है कि पहले से पूरी हो चुकी और वर्तमान में लागू की जा रही परियोजनाओं से लगभग 18,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं के पूरे होने और पूरी तरह चालू होने पर 7,800 और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सांसद बिचुक ने फिल्म रिबेट स्कीम के बारे में सवाल उठाया। 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस अवधि में 102.5

0: 1 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान किया गया। 2026 में 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 9.3 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने इस परियोजना के तहत वापस की जाने वाली राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की संभावना का भी उल्लेख किया। बजट संबंधी सीमाओं और सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए वापस की जाने वाली राशि पर एक अधिकतम सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुरूप फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक संख्या में परियोजनाओं को इस योजना का लाभ देने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि उनसे ठोस आर्थिक लाभ मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की पहचान तथा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उसकी आकर्षकता और मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने सदन को ये भी याद दिलाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना में कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने आलान गोविंदन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ के करीबी मित्र थे और उन्होंने उनके लिए नामधारी अथवा ऋणदाता के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार गोविंदन ने प्रवीण जगनाथ की अंगुश रोड स्थित संपत्ति के संबंध में बिलेश गैस्टेट को 20 मिलियन रुपए का भुगतान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी आलान गोविंदन की फिल्म प्रिजनर्स ऑफ पैराडाइज उस समय बन रही थी, जिसके लिए ईडीबी ने उन्हें 66 मिलियन रुपए का भुगतान किया था, जिसमें से 21.6 मिलियन रुपए टैक्स के रूप में काटे गए थे। उन्होंने कहा कि अब ईडीबी का बोर्ड उन फिल्मों को मंजूरी देता है जिन्हें सहायता मिलनी है और ये प्रक्रिया नियम आधारित प्रणाली पर है। इसके विपरीत पिछली सरकार के दौरान ईडीबी के सीईओ अकेले ही इन सहायता राशि को मंजूरी देते थे। अब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि ईडीबी के नेतृत्व के लिए जल्द ही एक नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
1: अपने प्रथम पीएनक्यू में विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने आज प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतो अस्पताल में हुई सर्जरी के बारे में प्रश्न किया। चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशंस में शामिल होने की इजाज़त है। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टरों की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सरकार ऐसी प्रक्रिया के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है। अब्दुल्ला की पूजा सुकालू।
2: Whether in regard to the surgery, the Honorable Minister of Health and Wellness,
3: चेतन बाबूलाल के पहले प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी के दौरान एक निजी डॉक्टर की मौजूदगी को लेकर था। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस के कानून में निजी डॉक्टर की मौजूदगी पर रोक नहीं है, हालांकि ऐसी मौजूदगी अपने आप या हर मामले में अनिवार्य नहीं होती।
2: Such requests are considered on
3: इन अनुरोधों की समीक्षा मंत्रालय की क्लिनिकल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। इसके लिए संबंधित सर्जरी के प्रभारी, अस्पताल के सर्जन की मंजूरी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मरीज की सहमति आवश्यक होती है। ये प्रक्रिया मेडिकल काउंसिल के आचार संहिता यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुरूप है।
2: As appropriate for the necessary administrative approval before any arrangements are made. This approach is consistent with the Medical Council's Code of Practice.
3: इस विशेष मामले में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि निजी डॉक्टर की मौजूदगी को उचित माना गया था, खासकर इस प्रकार की सर्जरी में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए।
2: My understanding is, Madam Speaker, is that
3: मेरी समझ है के अनुसार डॉक्टर सुक्का शुरू में एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, लेकिन जब सर्जरी करने का निर्णय लिया गया तो चूंकि वे की होल सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने माना कि पारंपरिक सर्जरी की बजाय की होल सर्जरी करना बेहतर होगा, जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। प्रधानमंत्री के अनुसार ये कोई नई प्रथा नहीं है।
2: मॉरिशस हैज फॉर मेनी इयर्स एंगेज्ड
3: मॉरिशस कई वर्षों से सरकारी अस्पतालों

0: में विशेष उपचार उपलब्ध कराने के लिए विजिटिंग विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की सेवाएं लेता आ रहा है। पिछले 18 महीनों के दौरान लगभग 60 विशेषज्ञ मेडिकल टीमों, जिनमें करीब 100 विदेशी निजी क्षेत्र के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल थे, ने मॉरिशस में अपनी सेवाएं दी हैं। कुल मिलाकर उन्होंने हमारे सरकारी अस्पतालों में 2500 से अधिक परामर्श किए और 1300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की हैं।
1: In our public hospitals.
0: विपक्ष नेता ने इस मामले में जांच की मांग भी की।
2: Whether a board of inquiry will be set up therein too, and he will request the honorable minister to step down pending completion thereof.
1: The facts stated do not warrant the setting up of a board of inquiry, and the question of the minister stepping down therefore does not arise.
2: Is there any protocol available for the public?
1: There is no protocol. Maybe we should look at protocols, maybe following the question, but sometimes it's urgent also. If you're going to go through different stages, the patient might die in the meantime. I don't want to give examples of names and all this, but it has happened that we have asked people from outside to come in the public hospital. And I want to tell the honorable leader of the opposition, today, doctors in public hospitals go and practice in private clinics. We allow it. Should we not allow it then?
3: राज्यसभा में आज सार्वजनिक पब्लिक यूटिलिटीज मंत्री ने नोवेल फॉन्स समेत कई इलाकों में नए बोरहोल्स की खुदाई का ऐलान किया। देश में पानी की स्थिति के मद्देनज़र पानी के रिसाव को कम करने के लिए पाइप्स बदले जाएंगे। 2026-2027 के बजट में इसके लिए 1.2 बिलियन रुपयों का प्रावधान किया गया है। मंत्री पत्रिका सियावादेन के मुताबिक सूखे से सबसे ज़्यादा पीड़ित इलाकों में जल्द ही 15 कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स लगाए जाएंगे। वे सांसद रामदास और बाबाजी के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रवीण जगनाथ ने आज लाइन बैराक्स में 2 घंटे बिताने के बाद वहां से प्रस्थान किया। वे प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा टेलीफोन सर्वेलेंस उपकरण की खरीद के संबंध में पूछताछ के लिए औपचारिक समन मिलने पर वहां गए हुए थे। अक्टूबर 2024 में मुस्तास लीक्स के बाद से ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहा और पिछले साल राष्ट्रीय सभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारियां भी दी गई। यासिंदर महमूद की यह रिपोर्ट।
0: प्रवीण जगनाथ को अवैध रूप से इंटरसेप्शन और निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़ी जांच के सिलसिले में बाद की तारीख से फिर से लाइन बैराक्स जाना होगा। पुलिस के अनुसार आज उनसे औपचारिक पूछताछ करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अपने कानूनी सलाहकारों से निजी तौर पर विचार विमर्श करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके वकीलों ने पूछताछ शुरू होने से पहले और अधिक समय मांगा। पुलिस ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उनसे पहले पूर्व ICT मंत्री दीपक बालगोबीन से भी पिछले जून में इस मामले में पूछताछ की गई थी। इंटरसेप्शन उपकरणों का मुद्दा फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सभा में उठाया गया था। बड़े पैमाने पर निगरानी से संबंधित एक संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने कहा था कि देश के कई स्थानों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर निगरानी करने के लिए किया गया था और वहां स्थापित प्रणालियां पूरे देश में फोन कॉल तथा इंटरनेट ट्रैफिक को रोकने और उन्हें संग्रहित करने में सक्षम थी। इन प्रणालियों 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि उनके रखरखाव पर प्रति वर्ष 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आती थी। उन्होंने ये भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इन उपकरणों को सूचीबद्ध किया गया, बंद कर दिया गया और नेटवर्क से अलग कर दिया गया। अब पुलिस जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि इन उपकरणों की खरीद किन परिस्थितियों में की गई थी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या थी।
3: हर साल हजारों श्रद्धालु मॉरिशस में आस्था और भाईचारे के मसीहा कहलाए जाने वाली पेलावाल की मकबरे तक की यात्रा करते हैं। सेंट क्वा में विशेष प्रार्थना सभा लगती है और देश के विभिन्न इलाकों से वहां तक की यात्रा लोग करते हैं। 2026 के लिए इस तीर्थ यात्रा का विषय रखा गया है। औसाम एक पेलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीसिस एक फ्रैटरनल। आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इस गतिविधि पर ज्यादा जानकारियां दी गई।
4: असामाजिक पहलावार

0: Pour une société plus juste et fraternelle, il y a 2024 में bien heureux Pelaval qui se marie qui tirent à yatra qui team है. ये तीर्थयात्रियों को पहलावाल के पद चिन्हों पर चलने का निमंत्रण है. उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों, बीमारों और मुक्त किए गए गुलामों की सेवा में समर्पित किया था और उनके सम्मान और समाज में उनका उचित स्थान वापस दिलाने का प्रयास किया था. 8 सितंबर को पहली प्रार्थना सभा रात 8 बजे होगी और उसके बाद रात 11 बजे. तीर्थयात्रा आयोजन समिति के पे पैट्रिक पोलिडो ने कहा, मोंसेनियर जुरोन ने अपने संदेश में ये याद दिलाया कि कैसे एक ज्यादा न्यायोचित और भाईचारे वाले समाज की मांग की गई है. यदि न्याय न हो तो शांति नहीं होगी. इस समाज का निर्माण चल रहा है, रास्ते पर है. इस वर्ष भी कई एनजीओ तीर्थयात्रियों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे, खासकर जरूरतमंदों के लिए. माइकल रामस्वामी ने कहा, ये एनजीओ आत्महत्या, ड्रग्स, शराब, घरेलू हिंसा आदि का निरोध करते हैं और कैदियों का समर्थन भी करते हैं. 2026 की इस तीर्थयात्रा का संदेश स्पष्ट है, मिलकर ऐसा मॉरिशस बनाना जहां हर व्यक्ति के लिए जगह हो, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे.
1: मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नया रूप देना, ये लक्ष्य है इलाकाई एफ्रिसिट्स परियोजना का. इस पहल के तहत ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका यूएनडीपी और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की साझेदारी से मॉरिशस को लगभग 30 मिलियन रुपए की फंडिंग मिली है. इसके साथ ही मॉरिशस के कुल 2500 और रूरिक्स के 1700 मछुआरे अलग अलग प्रशिक्षण प्रोग्रामों में भाग लेंगे. मकसद है मत्स्य उद्योग को ज़्यादा सस्टेनेबल, फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बनाना. मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर ज़ोकिया हाद का कार्यकाल पूरा हो चला है. उन्होंने आज काठमांडू में गणराज्य के उपराष्ट्रपति रुबे हंगले से विदा लिया. दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर. बदलते वैश्विक हालात के बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आपसी संपर्क पर मंथन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई पर जोर दिया. वहीं सम्मेलन से अलग नेताओं की मुलाकातों पर भी खास नजर रही. आशा गोबिन.
2: बदलती वैश्विक स्थिति के बीच संवाद, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की कोशिश. किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 26वें शिखर सम्मेलन में एशिया के कई प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आई. एससीओ के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति सहित कई सदस्य देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया. क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, व्यापार, आपसी संपर्क और आर्थिक सहयोग चर्चा के केंद्र में रहे. सम्मेलन के अंत में बिश्केक घोषणा पत्र को अपनाया गया और सुरक्षा, ऊर्जा, परिवहन, नई टेक्निक, जलवायु और अन्य सेक्टरों से जुड़े 28 दस्तावेजों पर सहमति बनी. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संपर्क और संभावना को एससीओ में भारत की सोच के तीन प्रमुख आधार बताया. उन्होंने आतंकवाद और उससे मिलने वाली आर्थिक मदद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई पर जोर दिया. साथ ही कहा कि देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की किसी भी पहल में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है.
3: दुनिया युद्ध में डूबी हुई है. चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है. विश्व संकटों से घिरा हुआ है. उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखे. हमारी नीति सही है. हमारी नीयत साफ है.
2: सम्मेलन के दौरान नेताओं की आपसी मुलाकातों पर भी खास नजर रही. नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए. वहीं व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग बातचीत में श्री नरेंद्र मोदी ने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया. 25 वर्षों में एससीओ का दायरा लगातार बढ़ा है। बिश्केक का ये सम्मेलन भी ऐसे समय हुआ है जब

0: दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष जारी है। ऐसे में अपने मतभेदों और अलग-अलग हितों के बावजूद सदस्य देशों ने सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: उधर नेपाल में पिछले बुधवार को उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1000 पार कर गई है। 3900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनके जीवित बचे होने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। 600 से ज्यादा लोग एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे हैं। अंदर हवा भेजने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन किसी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के खिलाफ लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया है। इसके तहत च्योपो प्रांत के किसंगानी में आधिकारिक तौर पर एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत फ्रंटलाइन कर्मचारियों, खासकर स्वास्थ्य अधिकारियों और वायरस से मरने वालों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को टीका लगाने के साथ हुई है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज रात और कल सुबह खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पूर्वी तथा दक्षिणी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:17 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ ही मुख्य सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। आप्याले निक्वायो में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंपा कार्तिक जो बर्की नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के दो बजे इनके बेटे श्री मनु कार्तिक के मकान आप्याले निक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। स्कूल लेने ख्वाहियों में 58 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमदत्त रामदुआ जो विश्वजीत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अलका देवी रामदुआ के मकान स्कूल लेने ख्वाहियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। पियती लेन कास्टेल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धन कुमारी चुनी पिताजी नाम रामचरण जो सरिता चुनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनके बेटे श्री हरीश चुनी के मकान पियती लेन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। नंबर 56 आबिदुल्लाकाई क्यूपी प्रोड में 72 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री मुनीश्वर द्वारका जो धीरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले एमबीसी के कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 56 आबिदुल्लाकाई क्यूपी प्रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM।

0: 1954 में 64 साल के 64 years old श्री बसंतराव बापामा, श्री बसंतराव बापामा जो वसंत नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान उदबासा का थोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधीपाल मां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। डेकोम रोड कारोलिन में 90 साल की 90 years old श्रीमती रवि शांति भोजा, पैदाशी नाम जरी जो शांति भोजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी कल दिन के 10 बजे के मकान डेकोम रोड कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। लोराते रोड मोंटाइम ब्लांश में 35 साल की 35 years old श्री अरविंद मानकू जो चिकोल नाम से ज़रा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। केयर थी कल दिन के 12 बजे के मकान लोराते रोड मोंटाइम ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाइम ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में दुबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: हाय क्या बात है। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी के सामने अचानक से आ गए और किसी ने आपको ये लाइन बोल दी कि जाने कितने दिनों के बाद गली में चांद निकला। ओहो क्या बात है, आप तो मन ही मन मुस्कुराने लगे हैं और शर्माने भी लगे हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि प्यार में कुछ ऐसी बातें कुछ लोग कह जाते हैं कि मन और बस दिमाग भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। तो चलिए, अगर ऐसा है तो हम बहुत ही प्यार से लेकर आए हैं ये प्यार भरा कारवां आपके दिल को और भी ज़ोर से धड़काने के लिए और आपको थोड़ा सा और शर्माने के लिए। वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाने एंड इस प्यार की फीलिंग्स को आप महसूस कीजिए एंड एक्सपीरियंस मैजिक ऑल अराउंड, हम तो यही चाहते हैं। तो चलिए, दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज। 7:06 हो चुके हैं। इट्स ऑलरेडी अ न्यू मंथ, यस 1 सितंबर 2026 ट्यूजडे इवनिंग, और हम और आप मिल रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 कुछ प्यार भरे नगमे के साथ और कुछ प्यार भरी बातों के साथ इस शो को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस को इंक्लूड ना करें, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम आपको इग्नोर करें। तो बस आप हैं तो ये शो है एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग शो में चार चांद लगाने के लिए बार बार आ ही जाते हैं। सो वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस ऑन 5499 1294।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: तू हम सफर तू हम कदम तू हम नवा मेरा, वाह क्या बात है। इतने सारे वर्ड्स के बीच में बस एक ही फीलिंग छुपा हुआ है और वो है प्यार का फीलिंग। और इस प्यार भरे एहसास को अगर आप थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम हैं यहाँ पर आपके प्यार के अरमानों को थोड़ा सा उड़ान देने के लिए। ऑफ कोर्स 7:30 टू ऑल दोज हैविंग द मील देयर डिनर राइट नाउ आपको विश करेंगे बना पीछे शुभाहार। बस ऐसे ही हमारा साथ आप लोग देते रहिए क्योंकि यहाँ पर ये म्यूजिकल कारवां तो चलता रहेगा टिल 9 PM कुछ गीतों के साथ और साथ में आपके कुछ मैसेजेस के साथ। सो यहाँ पर हमें आपने याद किया, हाय दिव्या जी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन। हमेशा की तरह नेक्स्ट गाना आपकी फ्रेंड के लिए इंदिरा, साथ में भी हफशामा, मीरा, सिनंद, कविराज, साधना, मालिनी, कविता और रेडियो मस्ती टीम के लिए थैंक यू सो मच। अनीता जी आप हफली कॉम्प्लेक्स से साथ देने के लिए दिल से आपको शुक्रिया।
1: Evening Lounge. RM2. Radio Musti.

रेडियो मस्ती। ब्यूटिफुल वन एंड टू ऑल दोज जो इस वक्त काम कर रहे हैं, आपको बोंक वाज एंड आई जस्ट होप कि आप आराम से काम करते करते हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं। 752 ऑलरेडी कुछ आपके मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुंच रहे हैं। चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं उस पार, यानी कि इन द सेकेंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज। एक बार फिर से आपके मैसेजेस को ज़रूर इंक्लूड करेंगे ऑन 5499 1294।

0: जाने क्या किया भाई, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ सवाल हम खुद से करते हैं, कुछ सवाल हम आगे के जो रास्ते हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या करना है, मंजिल कहाँ जाना है। और बस प्यार होता है तो सवाल खुद ब खुद मन में इतने आ जाते हैं कि कभी कभी हम जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जब आप प्यार करते हैं ना, तो इतना सोच समझ कर प्यार कभी नहीं होता है, क्योंकि लव नोज नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स एंड नो एज। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपसे यही कहेंगे कि प्यार में लॉजिक नहीं बल्कि मैजिक काम करता है। इसीलिए आप ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, नो इफ्स एंड बट्स, नो अगर मगर, नो किंतु परंतु, क्योंकि जब प्यार होता है तो हो जाता है और ये दिल को पूरा पूरा 100% पता चल ही जाता है। हाँ, ये अलग बात है, हमेशा हम आपसे कहते हैं ना कि कभी कभी दिमाग और दिल के बीच में एक जंग से छिड़ जाती है, लेकिन आखिर में और एंड में जीत हमेशा दिल की ही होती है। तो चलिए, प्यार से आपको अपनी मंजिल की ओर हम पहुंचा कर ही रहेंगे। और जब हर किसी की मंजिल एक ही जैसी हो तो वो मंजिल बहुत ही खूबसूरत होती है, और इस मंजिल का नाम है प्यार। प्यार के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर चलेंगे आपको नॉनस्टॉप, ऐसे ही गाने चलाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे आपको टिल 9 PM। सो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे खूबसूरत मैसेजेस के लिए जो आप हमें भेज रहे हैं ऑन 5499 1294। तो चलिए, आपका साथ है और हम भी टाइम टू टाइम आपसे कुछ बातें करने आएंगे, और ऑफकोर्स ऐसी वैसी बातें नहीं बल्कि प्यार भरी बातें आपके साथ हम कुछ शेयर करेंगे, आपस में दिल के जज्बात शेयर करेंगे। एंड चलिए, आपकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है, डू लेट अस नो किस तरीके से आप अपने इस ट्यूसडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं, और ज़रूर हमें बताइएगा ऑन 5499 1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: 7:26 हो चुके हैं. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है. एंड चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर. नमस्ते, आई एम जिलाशा फ्रॉम वाकवा. प्लीज प्ले अ ब्यूटीफुल गाना फॉर माय नानी ज्योति. इट्स अ बर्थडे फ्रॉम केदू सुकून व्यापुरी नेमधारी एंड रामधोनी फैमिली की तरफ से. एंड यहाँ पर आप कहती हैं, गुड इवनिंग दिव्या जी, नाइस सॉन्ग, एक मुलाकात. चलिए, एक मुलाकात जरूरी है और रोज रोज वी मेक श्योर कि आपसे मुलाकात करने के लिए आ ही जाते हैं टू मेक दिस बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग. प्रकाशवती जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. एंड साथ में पर आप कहती हैं, हाय दीदी, हाउ आर यू, ब्यूटीफुल गाने चल रहे हैं, प्यार किया है, चोरी चोरी फ्रॉम द मूवी मोहब्बत, फॉर ऑल योर फैमिली और रेडियो मस्ती टीम के लिए भी थैंक यू सो मच. प्रीति, हमारा साथ देने के लिए. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे टू ऑल दोज जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और मे बी सुनते सुनते आप प्यार की दुनिया में खो गए हैं. एंड आपसे हम यही कहेंगे कि आप उधर ही प्यार की दुनिया में खोते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी हकीकत की ज़िंदगी से निकलकर सपनों की दुनिया में पहुंचना बहुत ही खूबसूरत होता है. और कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि सपनों की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन बिलीव मी, आप सपनों की दुनिया की तरह अपनी हकीकत की दुनिया को भी सेम बना सकते हैं. बस इसमें थोड़ा सा प्यार का बसेरा डालकर तो देखिए कैसे ज़िंदगी सवर जाती है.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: चलिए आपका दिल चुराने के लिए ये खूबसूरत सा गाना आप लोगों के नाम अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज़ों में। यहाँ पर हमारी प्यारी से अनीता जी कहती हैं, हाय दिव्या जी, आप हमसे नाराज़ हैं क्या, मैसेज नहीं पढ़ती। बिल्कुल, हमने आपका मैसेज पढ़ा है, शायद आपने नहीं सुना, लेकिन आपका मैसेज तो हमने बहुत ही प्यार से पढ़ा, पूरा टाइम लेके भी हमने आपका डेडिकेशन किया। सो वी ऑल्सो हैव ज्योति जी, आप शातु बनाए सिनेक्स कनागुजार फॉर आशनी रेखा सुरेखा एंड मदब फैमिली एंड रेडियो मस्ती टीम के नाम।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. बजकर 55 मिनट हो चुके हैं एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा गाना वेक अप सीट मूवी से लिया गया है एंड चलिए छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ 24 आवर्स नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए ऐसे ही रेडियो मस्ती पर खूबसूरत गाने चलते रहेंगे तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है लेट नाइट ग्रूव्स। जी हाँ दोस्त, रात का सुकून, हल्की सी ठंडी हवा और बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना, इससे बेटर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। आप जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बस थोड़ा सा वक्त खुद के नाम कर दीजिए, क्योंकि दिन भर सबका ख्याल रखते रखते हम कभी कभी खुद को भूल ही जाते हैं। तो टुनाइट just relax, breathe and let the music take over. You're listening to your late night grooves with me, RJ Ganesha on Radio Masti.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, खूबसूरत गीतों का सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। चन चन कर लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे दिल को छू जाते हैं। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो सुनते ही किसी की याद बड़ी जोरों से आने लग जाती है, और कभी कभी वो गाना हमें खींच के लेके जाते हैं उन वादियों में जहाँ पे हम अपने खूबसूरत खूबसूरत यादों को सजा के रखते हैं। तो चलिए, हम तो चाहते हैं कि बस आराम से आप बैठ जाइए और अगले नगमे को आराम से दिल से सुनिए। ये अगला गाना खासकर आपके उन खूबसूरत यादों के नाम।

कभी-कभी एक रोमांटिक गाना वो कह देते हैं जो हम खुद वर्ड्स में कह नहीं पाते इसलिए अगर आज दिल में कोई है तो शायद ये नेक्स्ट सॉन्ग उसके लिए परफेक्ट मैसेज होगा और अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं खुद से प्यार करना भी बहुत जरूरी होता है तो स्टे विद मी स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती एंजॉय द म्यूजिक एंड लेट द नाइट ग्रूव ब्यूटीफुली स्पेशली मेरे साथ किनिशा के

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: So, my beautiful listeners, दिन कैसा भी रहा हो, रात हमें एक fresh beginning का chance देती है. जो हुआ, उसे जाने दीजिए. जो कल होगा, वो कल देखेंगे. आज बस music सुनिए, थोड़ा smile कीजिए और अपने दिल को थोड़ा सा सुकून दीजिए. Romantic melodies के साथ, मैं हूँ आपका साथ देने के लिए in your late night grooves on Radio Musti.

वैसे दोस्तों क्या आपने नोटिस किया है कि रात में गाने कुछ ज्यादा ही दिल के करीब लगने लग जाते हैं शायद इसलिए क्योंकि दिन का शोर खत्म हो जाता है और हम फाइनली अपने फीलिंग्स को सुन पाते हैं तो जो भी फील आप कर रहे हो फील कीजिए हैप्पीनेस हो नॉस्टैल्जिया हो

या थोड़ी सी लव वाली फीलिंग लेट द म्यूजिक स्पीक टुनाइट क्योंकि आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स हां जी ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मस्ती

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है बिल्कुल दोस्त और किसी स्पेशल पर्सन की याद भी तो आ रही है तो उन्हें मैसेज करने से पहले एक ब्यूटीफुल सॉन्ग डेडिकेट कर लीजिए उनके लिए जैसे कि ये अगला गाना हम आपके स्पेशल पर्सन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे कभी कभी एक सॉन्ग का आई मिस यू हजार

0: प्यार प्यार सिर्फ किसी एक इंसान के साथ होने का नाम नहीं है प्यार वो फीलिंग है जो लाइफ को ब्यूटीफुल बना देती है अपने फैमिली से फ्रेंड्स से किसी स्पेशल पर्सन से और सबसे इम्पोर्टेंट खुद से प्यार कीजिए टुनाइट लेट्स सेलिब्रेट ऑल दोस सेलिब्रेटिंग दीज ब्यूटीफुल फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक दिस इज योर लेट नाइट ग्रूव्स जो रात को हम आ जाते हैं आप लोगों का साथ देने के लिए हाँ जी अगला गाना आपके और आपके उस खास फीलिंग्स के नाम
1: Late Night Grooves.
2: RM2. Radio Musti.

कुछ गाने सुनते ही दिल कहता है ये तो मेरी ही स्टोरी है। कभी आपके साथ भी हुआ है ना, एक मेलोडी, एक लिरिक्स या और सडनली किसी एक पर्सन का फेस आंखों के सामने आ जाता है। तो अगर आज ऐसा ही कोई गाना आपको किसी की याद दिलाए तो स्माइल कीजिए, बिकॉज सम मेमोरीज आर मेंट टू बी चेरिश्ड। बिल्कुल, हम तो यही मानते हैं। और फिलहाल के लिए जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं वो ट्रूली मैडली डीपली इन लव, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम है।

आज रात एक सिंपल सी रिमाइंडर है मेरी जान, लाइफ परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए टू बी हैप्पी। जो छोटी छोटी खुशियां मिल रही है ना आपको जिंदगी से, उन्हें आप दिल से एंजॉय कीजिए। एक कप चाय, फेवरेट पर्सन, फेवरेट म्यूजिक, समटाइम्स दैट्स इनफ, है ना। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए और एंजॉय दिस ब्यूटीफुल नाइट विद मी आरजे की निशा ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

रात का वक्त है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी साइड में रखिए और अपने अपने लिए एक लिटिल मी टाइम निकाल दीजिए। आप डिजर्व करते हैं, यू डिजर्व पीस, हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और अगर साथ में रोमांटिक म्यूजिक हो तो नाइट और भी स्पेशल बन जाती है। सो स्टे राइट हियर बिकॉज योर फेवरेट लेट नाइट मेलोडीज कंटिन्यू ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती दिल की गहराई से बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारा साथ देने के लिए टू ऑल दोस हु आर वर्किंग कुराश टू यू दिल छोटा नहीं करते हैं आई नो आपका भी मन कर रहा होगा कि अगर आप घर पे होते तो कितना अच्छा होता लेकिन सोचो तो जरा हम भी तो है ना आपका साथ देने के लिए आपके मनपसंद गानों को हम लेकर आए हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स तो चलिए बोन कुराश टू यू और नेक्स्ट वन गोज आउट स्ट्रेट अवे टू यू माय डियर टू ऑल दोस हु आर वर्किंग

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: आज रात किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं. बस खुद को थोड़ा रेस्ट दीजिए. You've survived every difficult day till now, and tomorrow is another chance to begin again. है ना? तो tonight relax कीजिए और इन खूबसूरत खूबसूरत romantic गानों में आप खो जाइए. बिल्कुल, आप बस हमारा साथ यूं ही देते रहिए और खूबसूरत खूबसूरत यादों को याद करते करते स्माइल कीजिए. आंखों में नमी आ सकती है, लेकिन रोकना मत, क्योंकि ये खुशी के आंसू होते हैं जब इंसान अपने गुड डेज, अपने गुड मेमोरीज को याद करते हैं. तो लीजिए, दिस वन गोज आउट टू यू स्पेशली इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: वैसे मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, अगर आज का दिन डिफिकल्ट था तो उसे यही छोड़ दीजिए। टुमारो डजंट नीड यस्टरडेज स्ट्रेस, है ना। आज की रात सिर्फ पीसफुल थॉट्स, ब्यूटीफुल म्यूजिक और पॉजिटिव वाइब्स का नाम लेते लेते आप एंजॉय कर लीजिए। दिल को हल्का कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मेलोडी को दिल से महसूस कीजिए। दिस इज अ लिटिल स्केप एक्चुअली, लेट नाइट ग्रूव्स के साथ ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूँ गिनिशा, जो शिद्दत से आपका साथ दे रही हूँ। तो लीजिए ये अगला नगमा आपके नाम।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना ही देते हैं। एक चाय टुगेदर, एक लॉन्ग ड्राइव, एक सिली जोक और वो मोमेंट्स फॉरएवर मेमोरी बन जाते हैं, है ना? अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है, टुनाइट जस्ट बी थैंकफुल एंड लेट्स डेडिकेट दिस ब्यूटीफुल मेलोडी टू ऑल दोज स्पेशल कनेक्शंस। जी हाँ, स्पेशली ऑन रेडियो मस्ती।

वैसे क्या आपको पता है कि रात जितनी क्वाइट होती है दिल की आवाज उतनी ही क्लियर सुनाई देती है तो अगर दिल कुछ कह रहा है उसे इग्नोर मत कीजिए अपने फीलिंग्स को समझना भी सेल्फ लव का एक पार्ट होता है और अगर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं डोंट वरी सॉन्ग्स है ना खूबसूरत कानों का ये सिलसिला जो हम लेकर आए हैं सो लेट द म्यूजिक से इट जस्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव्स

वैसे दोस्तों आज रात एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, अननेसेसरी नेगेटिविटी को अपने ब्यूटीफुल माइंड में जगह नहीं देंगे आप। जो लोग आपको जेन्युइनली लव करते हैं ना, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। जो मोमेंट्स खुशी देते हैं ना, उन्हें चेरिश कीजिए। और जो चीजें हर्ट करती हैं, उन्हें स्लोली लेट गो कीजिए। लाइफ इज टू ब्यूटीफुल टू वेस्ट ऑन नेगेटिविटी, है ना? सो स्टे विद मी इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती फॉर सम लवली मेस्मराइजिंग गाने।

0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: खूबसूरत गानों का सिलसिला चलाते चलाते जी हाँ कब पहुंच गए इस खूबसूरत से शो के एंड में हमें पता ही नहीं चला। उम्मीद करते हैं कि दिल से आपने एंजॉय किया, महसूस किया हर एक खूबसूरत नगमे को जो हमने पेश किया इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। फिलहाल के लिए आप गिनीशा को इजाजत दीजिए, बस अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटते चलिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती
0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते